की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pen. बिल्कुल 8 बजे के उस पार हम लोग पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा यहां पर आपके साथ चल रहा है मस्ती का मंत्रा। एंड यस, वी आर रिमेम्बरिंग द चॉकलेट बॉय शाहिद कपूर। दैट्स राइट, अभी ये गाना चल रहा था, बट दिस वन इज फ्रॉम इश्क विश्क रीबाउंड। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल वन। क्या क्यूट, बेहद क्यूट लगा था हमारा शाहिद कपूर। एक्चुअली क्यूट वो अभी भी लगते हैं, बट उन्होंने रोल्स ऐसे इतने सारे कर लिए हैं ना, वो अग्रेसिव वाले, कि वो वाली फील भी आजकल आ ही जाती है। बट कमिंग बैक टू हमारा भाई, बाकी एक ही खबर भाई, संजय दत्त जो है ही इज लाइक डूइंग लाइक रियली रियली वेल। बट द ओनली थिंग इज दैट अब संजय दत्त को भाई एक टाइप के ही रोल जो है वो मिल रहे हैं। हाल ही में उनका हैप्पी वाला बर्थडे भी गया एंड ही गॉट लाइक सो मेनी विशेस एंड यू नो काफी वो सारी बात कर रहे थे। तो ही वाज संजय दत्त जो है वो यही कह रहे थे कि भाई हाउ बॉलीवुड जो है हैज चेंज ओवर द इयर्स एंड saying that the industry was once like a family, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को पहले support किया करता था। It used to feel like a family, to be very precise, that was a statement। कहते फिर Hollywood से compare कर रहे हैं and he said that Bollywood has become cutthroat and very very competitive, while Hollywood continues to celebrate togetherness and mutual respect and everything, and he hopes that the sense of unity in Hindi film industry जो है it returns one day। सर जी या एक तो मतलब वही है ना, वो जो कहते हैं ना कि ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर। हमको लगता है यहां से कि ऐसा है, मे भी वहां जाके लगेगा कि वहां पर भी सेम ही कहानी है, बट यू नेवर नो। Having said that, this is also true कि भाई cutthroat competition तो है ही, and Bollywood की दुनिया all in all जो है अपने आप में बहुत ही different। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी की तरह की चीज हो सकती है, and anything is possible। That's what like is the crux of the whole story। So yeah, I get you, संजू बाबा कि ये नहीं सुधरेंगे। गाना प्ले करते हैं रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर। कमिंग अप नेक्स्ट इज गोलमाल अगेन के साउंडट्रैक से ये वाला गाना। 8 बजकर हो चुके हैं 6 मिनट। यस, जागो मोहन प्यारे, जाग ही गए होंगे।

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
5: पहले के टाइम में सालों सालों तक सिलेबस बदलता नहीं था, लेकिन अभी ऐसा एडाप्टेशन हुआ है बॉडी और माइंड का कि घड़ी घड़ी ये जितने भी सोशल मीडिया के एप्स वगैरह है, इनके सिलेबस बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है और हमें उसको समझना भी पड़ता है। राइट, वी आर काइंड ऑफ डीलिंग विद इट, बट व्हाट टू डू, इट इज व्हाट इट इज। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ, मस्ती का मंत्रा चल रहा है। 8:00 हो चुका है 19 मिनट। इंस्टाग्राम जो है उन्होंने फिक्स किया अपना वन ऑफ द मोस्ट अपेरेंटली उन्होंने सर्वे किया था, तो अनोइंग थिंग्स अबाउट पोस्टिंग। सो बेसिकली अब जो है यू कैन नाउ चेंज द ऑडियो आपके अपने पोस्ट पे आफ्टर इट्स लाइव एंड यू कीप एवरी लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यूजुअली क्या होता है कि आप जब एडिट करते हो तो वो पूरा का पूरा सारा चीज नया कर देता है, सब कुछ जो है आपने जितने भी उसमें यू नो सीन या लाइक्स कमाए होंगे तो वो सारे के सारे चले जाते थे। बट या नो मोर डिलीटिंग एंड री अपलोडिंग जस्ट बिकॉज द ट्रेंडिंग साउंड जस्ट गॉट ओल्ड। सो यू कैन चेंज इंस्टाग्राम का ऑडियो फॉर अपलोडेड पोस्ट विद Without losing likes and reach, which is amazing. So well, आप अपने published post पे जा सकते हैं, then you see those three dots जो है जो upper corner में रहते हैं, go there, tap that, select edit, choose a new audio track and save. So well, सिर्फ मेटा वेरीफाइड के लिए नहीं, इंस्टाग्राम इज रोलिंग दिस आउट टू ऑल द यूजर्स। तो भाई बढ़िया है, ये भी काफी बढ़िया है, एकदम सब बढ़िया है हर जगह पर। एंड आई समटाइम्स फील दैट कि एक टाइम था जब मुझे लगता था कि यार हर किसी भी चीज के साथ एडजस्ट करने में कितना वो होता होगा, बट अभी इफ आई सी एंड थिंक अबाउट दीज थिंग्स, भाई रोज ही एडजस्टमेंट चल रही है, हर रोज कुछ नया मैं सीख रही हूँ, एवरी सिंगल डे, एंड इट इज लाइक नेवर एंडिंग, विच इज अ गुड थिंग और नॉट अ गुड थिंग, पता नहीं यार जो है यही है। अपडेटेड आपको रखेंगे, खुद को भी रखेंगे साथ साथ में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल आपको लेकर जाएंगे धुरंधर के इस गाने के पास, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
5: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
6: जीजी।
5: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
6: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
7: And guess what? You can get these Krishiwal ke nuts from GG Mart at a fair price. Bhai, puri baat batati hu. Radio Masti 24/7 Live par aap sun rahe Masti ka mantra antra ke saath. Bhai, National Day ka a month jo hai, matlab celebrations. And celebrations bina shopping ke? Little difficult. To agar aap abhi apni pantry ko restock karne ka plan bana rahe hain, so of course GG Mart jo hai celebrate kar rahe hain Singapore ka National Day with a 10% discount on all grocery and nuts item 5th August se lekar 31st August tak. So now, whether you are looking for premium Krishiwal ke nuts ya fir inka Desai Bandhu Alfonso Mango ka pulp, natural honey, gulkand, jamun triangles, everyday ki groceries and yeah, you will find it all under one roof. And also, Ganesh Chaturthi bhi zyada dur nahi hai. So if you are planning ahead, GG Mart has beautiful Ganpati Bappa ke idols available for you too. Aapke ghar, aapke office ke liye. And here's another, of course, update. 17th to 23rd of August, Krishi World ke nuts jo hai will also be showcased at the NTUC Fair Price jo hai City Square Mall mein, wahan par bilkul exhibition pe lagenge. So do drop by, explore unke premium range, sample the goodness and take your favorites absolutely home. Is National Day mein shop kariye more, save more and smile more. You can order them online as well, ggmartonline.com.sg. Filhal ke liye hole hole badhte hain agle gaane ki aur. Good morning.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है सबकी वापसी हो रही है. सारे लोग जो कि एक ब्रेक के लिए जा चुके थे, या दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली कमिंग बैक एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव 8:38 बाय द स्टूडियो क्लॉक. अदनान सामी, ये नाम कैसे हम लोग भूल सकते हैं. सो वेल भाई, 9 साल के इस ब्रेक के बाद जो है ये काफी कुछ ऐसी खबर आ रही है. हमारे अदनान सामी जो है बॉलीवुड प्ले बैक रिकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल करने वाले हैं. He took his अपना social media का page to reveal that he has lent his बहुत ही अलग से उनके जो vocals है to this energetic new track for अक्षय कुमार का upcoming venture. Director Dubai Anees Bazmi साहब, the film basically brings together a star-studded ensemble yet again, and Adnan Sami का जो addition है to the soundtrack has instantly elevated the anticipation surrounding कि भाई कौन सी movie, क्या album और क्या गाना गाने वाले हैं वापस से हमारे Adnan Sami. Now the studio recording session जो है वो एकदम मतलब एक अलग ही तरह का एक रीयूनियन था. म्यूजिक कंपोज्ड बाय आनंद राज आनंद एंड या बिहाइंड द सीन का एक फोटोग्राफ जो है उन्होंने इसके साथ साथ बिल्कुल शेयर किया. एक्साइटमेंट काफी है. अदनान सामी की आवाज ना ही सिर्फ जो है डिफरेंट है, वो रोमांटिक में भी अच्छी लगती है. थोड़ा सा हल्का टीजिंग वाला गाना होता है उसमें भी अच्छी लगती है. बट वन ऑफ माय वेरी वेरी फेवरेट सॉन्ग्स व्हिच आई फील लाइक इट्स फन एंड यू नो इट्स सो रिलेटेबल एट द सेम टाइम इज द वन व्हिच आई एम गोइंग टू प्ले राइट नाउ. ओके, इट्स कॉल्ड मुझको भी तो लिफ्ट करा दे. एंड ये गाना हम लोग इतना ज्यादा गाते थे, गया बंगला मोटर कार दिखा दे, एक नहीं दो चार दिला दे. और उसके बाद लाइन आती है, ऐसे वैसो को दिया है कैसे कैसे को दिया है. या आई नो, लेट्स सिंग इट टुगेदर. आई थिंक परफेक्ट है ये तो. गुड मॉर्निंग.

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match. And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live Prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ। पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
2: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
3: गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराव के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। वेल, अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिंगापुर में रहते हैं तो भाई खबर आपके लिए काफी अच्छी है, मे बी आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए, दैट इज फॉर श्योर। लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि LTA जो है, उन्होंने अनवेल किया है Phase 3 ऑफ क्रॉस आइलैंड लाइन, विच इज गोइंग टू एड 4 न्यू अंडरग्राउंड MRTK स्टेशन स्ट्रेचिंग फ्रॉम थमान जुरोंग टू गुल सर्कल, विद 2 न्यू इंटरचेंज के स्टेशन Jurong Pier and Gul Circle. Now construction jo hai is expected to begin in 2027, and ye jo line hai is targeted to be completed in late 2030s. Now I know late 2030s ki bhai bahut time hai ye to abhi, but these are the kind of projects that completely change the way, you know, the whole city moves. Kafi sare commuters traveling to and from the western industrial areas, journey ke times could be reduced by up to 50 minutes. Imagine saving almost an hour of your daily commute. Nothing like it. It's just completely, you know. And another benefit, the cross island line jo hai will eventually become Singapore ka longest fully underground MRT line, eventually connecting the east, west and northeast of the island, while also giving commuters more alternative routes and reducing jo congestion hai on existing lines. Well, I love Singapore. I mean, the transport planning, it's just not about today, it's about what the country will need in 10, 15 or even 20 years for now. They are insanely good. So, well, yeah, this is it. And yeah, every time Singapore surprises me. मैं हमेशा ये सोचती हूँ transport को लेकर, कुछ भी लेकर, जैसे कोई update आता है कि क्या चल रहा है, बट कुछ तो चल रहा है, विच इज अ गुड, कुछ चलते रहना चाहिए, सो दैट गलती से कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, कुछ रह ना जाए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल बढ़ते हैं आगे, एंड यस आई विल बी राइट बैक।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. There was nothing, there was no emotion which this man couldn't portray in his voice. Radio Masti 24/7 Live Antara ke saath 9 baje ke us paar bilkul pahunch chuke hain. Good morning, bhai. Main baat kar rahi hoon aaj jinki birth anniversary hai. Bhai, the legendary, the greatest of all times. किशोर कुमार, दैट्स राइट भाई। कल ही हमारे रिक्वेस्ट शो पे देवेंद्र पाजी ने गाना रिक्वेस्ट किया था, एंड आई वाज लाइक मैं आ जा रही हूँ, एंड आई लव किशोर दा। इमेजिन, लाइक मेरा तो बहुत ही स्ट्रांग मेमोरी है, बिकॉज जब हमारे घर पे यू नो संडे वगैरह का दिन होता है, तो उस दिन आराम से बैठकर यू नो सुबह का सारा रूटीन हो गया, देन रेडियो चलाया जाता है, एंड मोस्टली रेडियो पे किशोर दा के जो है वो गाने चलते थे, या फिर कैसेट पे पापा चलाते थे और मम्मी जो है साथ साथ में गुनगुनाती थी उनके गाने, एंड दैट्स सच अ ब्यूटीफुल बिट ऑफ मेमोरी आई हैव विथ मी। वेरी वेरी फेंट अभी तो, बट आई वॉज वेरी वेरी स्मॉल, बट देन इट जस्ट काइंड ऑफ स्टेड विथ मी, एंड नो वंडर आई हैव दिस रियल रियल लव टुवर्ड्स किशोर दा की आवाज। एग्जैक्टली द सेम थिंग, मतलब एक इमोशन आप पिकअप नहीं कर सकते जो किशोर दा बिल्कुल उन पे सूट नहीं करता हो, चाहे वो क्रेजी हो, चाहे वो फनी हो, चाहे वो दर्द भरा गाना हो, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, ही समहाउ जस्ट डिड जस्टिस टू एवरी सिंगल थिंग। और हर गाना जब वो इतनी रूह के साथ गाते थे कि आपको वो गाने आज भी यूं दिल को छू कर चले जाते हैं कि क्या आई मीन उनके जैसा और कोई नहीं हो सकता है। नॉट ओनली दैट, आई थिंक पर्सनैलिटी वाइज ऑल्सो इतने किस्से हैं उनके, इतने किस्से। वी यूज टू डू द शो कॉल्ड क्रेजी फॉर किशोर, राइट? उनके बेटे अमित कुमार वो शो जो है करते थे, यार इतने मतलब हंसी वाले किस्से कि मतलब, एंड ही वॉज सो ब्लंट। उनको पता था कि ये चीज ऐसी है, और किसी से टेढ़ी चीज निकलवानी हो तो खुद भी उतना ही टेढ़ा होना पड़ता है। सो या आई जस्ट एक म्यूजिक जो है जिसके लिए पैशन नहीं था, ही जस्ट लिव, ही वॉज द म्यूजिक, ही वॉज द सॉन्ग, ही जस्ट यूज टू एम्बाइब एवरी सिंगल थिंग। सो रिमेम्बरिंग किशोर दा आज की डेट में विद द अगला गाना, विच यूज टू बी एंड टिल डेट इज वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट किशोर कुमार सॉन्ग्स, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आज शाम डियर मस्ती दिल से पर जब आप ट्यून इन करेंगे तो वहां पर भी आपको किशोर दा के गाने सुनने को जरूर मिलेंगे। ऑफकोर्स आज लेजेंड का बर्थडे है, तो इस तरह से गानों के साथ, उनके गानों के साथ सेलिब्रेट करना बिल्कुल बनता है। सो यस, नॉट ओनली वी विल हैव गुड एंड डीप कॉन्वर्सेशंस, बट आल्सो वी विल हैव दोस अमेजिंग किशोर दा के गाने एज वेल। सो ऑल द मोर रीजन टू ट्यून इन टू डियर मस्ती दिल से शाम को 5 बजे से। फिलहाल के लिए माय फेवरेट गाना।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
2: Happy National Day, Singapore!
1: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
3: That's right, National Day celebrations are just around the corner, और celebration का असली मजा तभी आता है जब पूरी family के साथ जो है आप table पर हो और साथ में हो एक शाही feast. And this August, Shahi Maharani North Indian Restaurant has two amazing reasons for you to celebrate as well. सबसे पहले तो weekday buffet for two, that's available throughout the month of this August, okay? For just $61 plus, down from usual $68 plus. That's Monday to Friday, दोपहर को 12 बजे से 2:30 बजे तक। एंड अगर आप सोलो डाइनिंग कर रहे हैं, इट्स जस्ट $38 प्लस। किड्स बिटवीन 7 to 12, उनके लिए अलग, एंड या जो 7 बिलो है उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री। सो इफ यू आर प्लानिंग समथिंग स्पेशल फॉर सिंगापुर का नेशनल डे विच इज 9th of August, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं शाही महारानी नेशनल डे लंच बुफे के लिए। अडल्ट जो है वो वहां पे डाइन इन कर सकते हैं 9th August को $58 प्लस पर, किड्स 7 to 12 के बीच में $40 प्लस, एंड या किड्स बिलो 7 डाइन एब्सोल्युटली फ्री। एंड द स्प्रेड which you can only imagine, sare ke sare North Indian favorites, delicious kebabs, all those rich curries, fragrant biryanis, irresistible desserts. And yes, because it's National Day, they have this special prata station with the local chicken curry. And yes, there's a special kids menu also with balloons as well. So this National Day, you can go out, celebrate it the Shahi way. आप अपना टेबल रिजर्व करा सकते हैं 6235-8840 पे कॉल करके। शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, राफल्स सिटी, सिंगापुर।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: दिस इज रेडियो बाजू 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस। एनीटाइम, एनीवेयर।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट,
2: आइए इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट जानते हैं। 9:28 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा इस वक्त केपीई टनल टुवर्ड्स ईसीपी आफ्टर एयरपोर्ट रोड। रवि ट्रैफिक की खबर है ऑन बेनमी रोड टुवर्ड्स सिटी बिटवीन वॉम्पो ईस्ट एंड केलांग बारू। हैवी ट्रैफिक की खबर है एक और इन सीटीई टनल अगर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स एवाई एट हैवलॉक रोड एग्जिट। वेल दैट वाज द ट्रैफिक अपडेट इस घंटे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के उस पार जो है गाने के साथ वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, मस्ती का मंत्रा आप सुन रहे हैं अंतरा के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way. Here's your price.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: आपको पता है कि एक टाइम था जब सोनू निगम पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अगेंस्ट जाकर, म्यूजिक इंडस्ट्री के अगेंस्ट जाकर खड़े हो गए थे. डिड यू नो अबाउट दैट टाइम? नो, लेट मी टेल यू दैट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. अंतर आपके साथ 9:35 हो चुके हैं यहाँ पर. नहीं, बात करते करते 9:36 अभी मेरे सामने हो चुका है बाय द स्टूडियो क्लॉक. भाई, जब सोनू निगम अपने पीक स्टारडम पे थे, व्हेन हिज सोलो albums were dominating all the charts, इनकी popularity जो थी वो unmatched हो रखी थी, तब top music giants including T-Series and Zee Music they stopped working with him. क्योंकि सोनू निगम ने demand किया fair copyright and royalty protections for playback singers. So सोनू निगम का ही कुछ देख रही थी मैं इंटरव्यू, एंड वहां पे उन्होंने शेयर किया दैट द लेबल एग्जीक्यूटिव्स जो है उन्होंने डिसमिस कर दिया हिज कंसर्न्स उस टाइम पर जो उनके थे, लेबलिंग हिम एन एक्टिविस्ट एंड शटिंग ऑल द स्टूडियो डोर्स ऑन हिम. इमेजिन, सोनू निगम पे मुंह पे दरवाजे बंद हुए हैं. जस्ट आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन. सो देन ही एक्सप्लेन दैट टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट इंडस्ट्री पावर हाउसेज वॉज अ डिलिबरेट चॉइस ड्रिवन बाय दिस कन्विक्शन to complete the fight for the artist ke rights. That music icon Lata Mangeshkar ji jo hai, originally unhone ye cheez champion kar rakhi thi. Even as playback offers jo hai dried up, he refused to back down completely, relying apne massive live stage shows par only and only then to sustain apna career, while waiting ki bhai kuch to structural change jo hai music business mein kabhi na kabhi aayega hi aayega. Now the gamble ultimately reshaped and Indian म्यूजिक का जो लैंडस्केप है वो बदला, जरूर बदला. एंड फिर इंडियन कॉपीराइट लॉज एंड उसमें अपडेट्स आए एंड देयर वाज ब्रॉडर शिफ्ट इन द इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स. म्यूजिक लेबल्स इवेंचुअली रिकॉग्नाइज्ड दैट जो सोनू निगम की डिमांडें थी दे वर जस्टिफाइड. टुडे दो सेम कंपनीज दे रेगुलरली बिल्कुल बिना मिस किए दे पे रॉयल्टीज आर्टिस्ट को, एंड सोनू निगम जो है उनके साथ एक अब वार्म सा गुनगुना, अभी ऐसी चीजों के बाद ना गुनगुने ही रिलेशनशिप होते हैं लेबल हेड्स के साथ हु वंस साइडलाइन है. भाई, फैशन मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें प्रियंका चोपड़ा का एक डायलॉग आता है कि जब आप सक्सेसफुल हो रहे होते हो और सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे होते हो, आपको जो जो इंसान उस सीढ़ी में आपकी उस जर्नी में मिलता है सक्सेस की, आप जब नीचे उतरते हो आपको वही सेम इंसान वापस जाते वक्त भी मिलते हैं. किसका टाइम कब बदल जाए, यू रियली रियली डोंट नो. बेटर दैट यू नो दैट व्हाट योर चॉइस इज एंड यू स्टैंड अप फॉर योर चॉइसेस. आई थिंक व्हाट दैट्स व्हाट ही डिड. भाई, ट्यूसडे को हम थोड़ा सा ज्ञान मोड में तो आ ही जाते हैं क्योंकि हमारा शाम तक का जो शो है वो कुछ ऐसी ही रिक्वायरमेंट लेकर आता है. सो बट फिलहाल के लिए लेट्स मूव अहेड. दिख रहा है मुझे बहुत ही कमाल का एक गाना on a beautiful Tuesday morning. Good morning.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी।
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: मैं टाइम पे किसी भी टाइम पे आऊं, कोई ना कोई मुझे खाना दिखा ही देता है। क्या ही बताऊं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ट्रंप के साथ मस्ती का मंत्रा चल रहा है। आपने खाना दिखाया और मैं आपको कुछ और भी ज्यादा डैजलिंग एंड स्पार्कलिंग जो है वो यहां पर बताने आई हूं। एंड बिकॉज हर जगह पर नेशनल डे के ऑफर्स और इस तरह की चीज चल रही है, तो बस मैंने कहा कि जब ये मौका भी मिल रहा है तो उसको कैसे आपको नहीं बताए। यू कैन सेलिब्रेट योर माइलस्टोन्स with Jarka's world's favorite jeweler as well, क्योंकि उनका One Nation Infinite Brilliance वाला जो कैंपेन है, I completely loved it. भाई लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप एंजॉय कर सकते हैं 9% GST absorbed on all diamond jewelry purchases, plus एक flat 30% का ऑफ मिलेगा आपको on gold jewelry के making charges. So well, जो भी कुछ आप प्लान कर रहे हो और पहले से शायद प्लान कर रहे हो, you can just make use of this time and these offers. क्योंकि along with all of these savings, special in store offers जो है, they are waiting for you. भाई 10th August तक ही ये सारे के सारे बिल्कुल लागू होंगे, तो अगर आपने अभी तक दिमाग में कुछ चल रहा था, यही वो वक्त है बंधु जब आप जा सकते हो और नेशनल डे के इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस डेफिनेटली अप्लाइड। आप जॉयलकास के किसी भी शोरूम में चले जाए, तीनों में से 412 या 320 या फिर 134 सरंगुन रोड। वेल this national day, आप enjoy करें bigger savings, brighter celebrations only at Jayalakas, world's favorite jeweler.
0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this national day, Jayalakas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Jayalakas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Jayalakas way.
2: See you, see you, see you, see you, see you, see you.

0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: हाँ जी भाई, इसी के साथ जो है यहाँ से निकलने का भी हो चुका है वक्त। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती का मंत्र चल रहा था अंतरा के साथ। गुड मॉर्निंग, एंड आपकी मॉर्निंग वैसे भी गुड हो ही गई होगी। आई होप यू एंजॉय द शो। अब बाकी की बातें और मुलाकातें जो है शाम के टाइम होगी डियर मस्ती दिल से पर, जहां पर नहीं सिर्फ हम आपकी चिट्ठियां पढ़ेंगे बट उसी के साथ साथ जो है आज के गाने जो है कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा किशोर दा के प्ले किए जाए। भाई इस लेजेंड को सेलिब्रेट करना तो बनता ही बनता है। एंड आई थिंक मैंने कहा ना कि हर इमोशन का गाना जो है हमारे किशोरदा के पास है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो जिंदगी एंड वी टॉक अबाउट लाइफ एंड वी टॉक अबाउट एनीथिंग, आई थिंक किशोरदा हैज ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स। सो यस, यू कैन एंड यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट। मुलाकात होती है तब, लेकिन फिलहाल के लिए यू हैव एन ऑसम डे अहेड। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
4: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: जब आपको लगे कि आपकी कोई नहीं सुनता है, आपकी कोई फिक्र नहीं करता है, बस उसी टाइम मेरे यानी आरजे नुपुर की आपको एक बात याद कर लेनी है। ऑन द स्टोर मैं आरजे नुपुर वंस अगेन मस्ती मॉर्निंग शो पर आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। एंड आजकल हर दूसरा इंसान यही कंप्लेन करता रहता है, मेरी कोई बात ही नहीं मानता, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी आप इस मामले में एकदम गलत है, क्योंकि आपका मोबाइल फोन है ना, वो आपकी दिन भर बातें सुनता रहता है और इन्हीं बातों का फायदा उठाकर आपको सोशल मीडिया पर, एडवर्टाइजिंग वेबसाइट्स पर वही कंटेंट सजेस्ट करता है जो आपका दिल चाहता है, जो आपकी पॉकेट चाहती है। हाँ, तो जब भी आपको लगे कि आपकी कोई नहीं सुन रहा, तब समझ जाना कि सुन रहा है। एनीवेज, मैंने यानी आरजे नुपुर ने भी सुन लिया है आपके मन की बात कि देखो बातें कम करो, गाने ज्यादा सुनाओ। ऐसे ही क्या? नहीं, अरे अरे अरे क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ, चलिए इसी बात पर बहुत सारे गाने और एंटरटेनमेंट कर रहा है आपका इंतजार। कमिंग अप आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल मैं आती हूँ आरजे नुपुर दिस साइड।

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match. And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: इस साल की दिवाली के प्लान्स और टिकट्स तो आप घर बैठे बैठे जल्दी ही करा लेंगे, आई नो, लेकिन थिएटर्स में भी जो टिकट्स हैं वो बुक करी जा रही हैं। मतलब एक तरीके से एक इल्यूजन बनाया जा रहा है कि दिवाली पर रामायण मूवी का पहला पार्ट आएगा और हर कोई भागने लगेगा उसकी टिकट लेने के लिए। एनीवेज, आप सिंगापुर में या इंडिया में या फिर जहाँ भी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे तो क्या आप रामायण मूवी के लिए एक्साइटेड है? हाँ। देखो, डायरेक्टर नितेश तिवारी के ऊपर तो अच्छा खासा प्रेशर है यार। 4,000 करोड़ रुपीस का जो बजट माना जा रहा है इस मूवी का। एनीवेज, इस मूवी में इस बार जो रावण के भ्राता यानी ब्रदर बने हैं विभीषण, वो कोई और नहीं, वो है विवेक ओबेरॉय। आपने ट्रेलर में भी देख लिया होगा, लेकिन इनका कहना यह है इस मूवी के लिए इन्हें जितना पे चेक मिला है वो पूरा का पूरा पे चेक इन्होंने डोनेट कर दिया है। हाँ जी, ऐसा इनका कहना है। तो भाई, ये मूवी फॉर अ कॉज भी बनती जा रही है, फॉर द प्रॉफिट भी बनती जा रही है, फॉर द कॉन्ट्रोवर्सी भी बनती जा रही है। देखते हैं आगे क्या क्या डेफिनेशन बनती जाएगी। मैं आरजे नुपुर, मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalitas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: हमारी आदत है, हमें ना एक चीज से कभी भी मजा नहीं आया है। 1+1 ऑफर हो तो मजा आए। अंजी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपर्दिसाई, और अगर मैं 1+1 की बात करूं तो टेस्ट और न्यूट्रिशन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। अंजी NTUC फेयर प्राइस एंड एपिडा के जॉइंट रोड शो में इस बार आपको मिलेंगे क्या न्यूट्रिशन और टेस्ट का कॉम्बिनेशन। अंजी डीजी मार्ट डेफिनेटली आपके लिए वहां पर अपनी प्रेजेंस देने वाला है। यहाँ पर आप इनके यहाँ पहुंचेंगे तो आपको प्रीमियम कैश्यूज सॉल्टेड मिलेंगे, प्रीमियम कैश्यूज प्लेन मिलेंगे, प्रीमियम चिली कैश्यूज मिलेंगे, असॉर्टेड कैश्यूज की रेंज मिलेगी, ड्राइड क्रैनबेरी की स्वीट टैंगी एंड एंटी ऑक्सीडेंट रिच डिलाइट कैंडीज भी मिलेंगी। सो इसके लिए आपको विजिट करना है 17-23 अगस्त के बीच सिटी स्क्वायर मॉल सिंगापुर। सो बाकी डिटेल्स के लिए www.ggmartonline.com विजिट करो या कॉल करो 8085-6577 पर। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर। थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: एक ऐसी मूवी जो सालों साल थिएटर्स में लगी रही और लोग उसे देखते रहे, और आई गारंटी अगर आज के वक्त सिंगापुर के थिएटर्स में वो मूवी लग जाए तो आप देखने चले जाएंगे। हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड अभी मैं हर रोज की तरह एक फेमस सी मूवी का एक फेमस सा डायलॉग प्ले करने जा रही हूँ, और ये डायलॉग कौन सी मूवी से है आपको गेस करना है।
3: थैंक यू मिस्टर राज।
4: You're most welcome, Miss Rajeshwari.
3: हाँ, Mr. Raj. जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं वो मुझे चुटकी बुलाते हैं।
4: Okay, चुटकी। और जिन लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ वो मुझे राज कहते हैं, सिर्फ राज।
3: Alright, Raj.
4: Alright.
2: एग्जैक्टली, अगर आप पहचान गए इस मूवी को जिसे इंडिया के मुंबई के एक सिनेमा घर में 19 साल तक प्ले किया गया, 1000 से ज्यादा सप्ताह इस मूवी को कंज्यूम किया गया, उस मूवी का नाम अगर आप पहचान गए हैं तो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे DM करके बता दो मेरी जान। डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।
5: वी आर द साउंड्स ऑफ द स्ट्रीट्स।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे,
1: दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन?
2: पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन?
3: क्या बात है,
2: आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
4: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

अच्छा क्विकली क्विकली क्विकली एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आपको जवाब देना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बहुत पर्सनल है यार। मतलब किसी भी तरह के त्योहार में, जैसे अभी राखी आने वाली है, उसके बाद बैक टू बैक फंक्शंस आने वाले हैं, तो इन त्योहारों को ये क्वेश्चन ना कहीं आंसर करने वाला है। हाँ, एंड दैट इज कि अगर आपको ज्वेलरी शॉपिंग पर 9% जीएसटी एब्जॉर्ब हो जाए और 30% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर मिल जाए, तो आप शॉपिंग करेंगे या नहीं करेंगे? और करेंगे तो खुद के लिए करेंगे, मॉम के लिए करेंगे या किसी और के लिए करेंगे, बताइए। हाँ, सो इस बार सिंगापुर के नेशनल डे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बना रहा है जोया अलोकास। हाँ जी, डायमंड ज्वेलरी परचेजेस पर 9% जीएसटी एब्जॉर्ब्ड और गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पर फ्लैट 30% ऑफ। सो ये स्पेशल ऑफर आपको मिलेगा 10th of August तक, तो देर किस बात की। विजिट करो नियरेस्ट जोया अलोकास शोरूम, मेन शॉप 412 सरानगुन रोड, या सेंट्रियम स्क्वायर 320 सरानगुन रोड, या लिटिल इंडिया 134 सरानगुन रोड। सो डेफिनेटली आप वहां से खाली हाथ नहीं आने वाले हैं। सो आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: जहाँ से आपका सैचुरेशन पॉइंट आता है कुकिंग करने में, करियर बनाने में, या जॉब करने में, या किसी से रिलेशनशिप में आने में, बस वहीं से एक नया सफर शुरू होता है कि कोई नई चीज आपका इंतजार कर रही है। चलो, आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में ही सब कुछ ना खराब खराब रहा है और किसी की लाइफ में नहीं रहा है। तो चलो एग्जाम्पल देती हूँ यामी गौतम का, राइट? सो यामी गौतम ने बताया कि विकी डोनर मूवी से वो बहुत ज्यादा मतलब फेमस टाइप हो गई थी, लेकिन उन्हें फिर भी रोल नहीं मिल रहे थे। बॉलीवुड में एक फेमस हीरोइन होते हुए भी रोल ना मिलना अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और जब इन्हें उरी और बाला जैसी मूवी ऑफर हुई, उससे पहले इन्होंने ऑलमोस्ट बॉलीवुड क्विट करने का प्लान कर लिया था। पता है कहां तक सोचा था? कि ये हिमाचल चली जाएंगी अपने होम टाउन और वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगी, वहां के नेचर के बीच में रहेंगी। और तभी इन्हें उरी और बाला मूवी जैसी ऑफर हो गई और इन्हें मजा आ गया। और वो कहते हैं ना, बहुत शिद्दत से जो एक्टिंग चाहते थे उन्हें एक्टिंग मिल ही गई। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है डोंट गो एनीवेयर मेरी जान। मिलते मिलते आपको मिल रहे हैं बेहतरीन गाने, सुन उनको एनीवेयर।

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
1: Happy National Day, Singapore!
0: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live Prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: देखो, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त होता है जो कॉम्प्लीमेंट देता है, पता है क्या यार, तेरी वॉइस कितनी अच्छी है, एकदम रेडियो पर जाने लायक। इवन सबका छोड़ो, मेरे जो फ्रेंड्स थे ना कॉलेज टाइम में, वो मेरे को नुपुर नाम से नहीं बुलाते थे, वो मुझे रेडियो नाम से बुलाते थे कि यार ये कितना बोलती है यार, एकदम रेडियो में मतलब करने वाली काम वाली पर्सनालिटी है इसकी, राइट। और इस कॉम्प्लीमेंट को मैंने ऑफकोर्स सीरियस ले लिया, तभी मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। हाँ, एनीवेज, अगर आपको भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। कहाँ? मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आया है मस्ती मीडिया अकेडमी, जहाँ पे आपका पैशन जो है ना वो प्रोफेशन बन सकता है। रेडियो प्रेजेंटेशन से लेके पॉडकास्टिंग से लेकर इंटरव्यू को कैसे लिया जाता है, कंटेंट क्रिएट कैसे किया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग से आप अपने बेहतर करियर ऑप्शंस कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, इवन लाइव रेडियो एक्सपीरियंस, रियल स्टूडियो ट्रेनिंग, एक्सपर्ट मेंटर्स और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, एक रियल माइक तक का जो सफर है ना वो आपको मस्ती मीडिया अकेडमी दे सकती है। हाँ बताओ, कितना बोल लेती हूँ मैं। हाँ, ऐसे ही एक्सपर्ट्स आपको सिखाने वाले हैं ये चीजें, राइट। सो एडमिशन्स के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हमें एक ईमेल भेजिए आप info@radiomasti.com.sg। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। और एक बात बता दूं, आप ये सारी जो स्किल सीखोगे ना हाइब्रिड तरीके से, मतलब आप कोई भी और जॉब के साथ साथ इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मुलाकात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट वाइल।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
4: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
3: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
4: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टकाटक जोश में रहो।
2: Do you remember, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी अनिल कपूर स्टारर नायक मूवी एंड जिसमें वो एक दिन के सीएम बनते हैं और इतने बेहतरीन काम करते हैं कि लोग उन्हें फॉरएवर का सीएम बना देते हैं। आय हाय हाय हाय, ये मूवी से निकलकर हकीकत होती जा रही है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, इंडिया के तमिलनाडु के जो सीएम है विजय, हाँ जी, सो विजय जो है वो एक्टिंग इंडस्ट्री में थे और इनकी जो लास्ट मूवी है वो सीएम की ओथ लेने से पहले जो शूट हो चुकी थी वो रिसेंटली रिलीज भी हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं, मूवी हिट करी हो या ना करी हो, लेकिन इनके जो स्टंट्स हैं और एक सरकार संभालने का तरीका है वो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। अभी रिसेंटली चेन्नई के मेट्रो स्टेशन पर ये खुद पहुंच गए अपनी टीम के साथ कि एक्चुअली में जो वहां की मेट्रो है वो ढंग से काम कर रही है, फ्लो है नहीं है, सिक्योरिटी है या नहीं है, और ऑन स्पॉट जाके इन्होंने चेकिंग करी है और लोगों ने इन्हें फिल्मी तरीके से बढ़िया मतलब तारीफों के पुल बांधते हुए बहुत कुछ बोल दिया यार। हाँ, सो डेफिनेटली इन इंडिया मूवी के साथ साथ रियल मूवीज भी बहुत जगह चल रही है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: अच्छा, स्कूल टाइम में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? स्पोर्ट्स. बस खेलने का मौका मिल जाए, मजा आ जाएगा, राइट? और फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए. कॉलेज टाइम पे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? बंक करना, राइट? किसी क्लास को बंक करके किसी दोस्त से नोट्स उधार ले लेना. आय हाय हाय हाय. वैसे लाइफ में फेवरेट चैप्टर क्या है? ये आप सिंगापुर की सड़कों पर आए हाय हाथों में हाथ डाले घूम ले. चलिए, डेफिनेटली बहुत सारी जगह होंगे जो आपकी लाइफ के फेवरेट चैप्टर बन चुके होंगे. लेकिन बॉलीवुड का फेवरेट चैप्टर पता है क्या है? कि पुराने गड़े मुर्दों को बाहर निकाला जाए, पुराने किस्सों को दोहराया जाए. तो चलिए आपको मैं बताती हूँ. अभिषेक बच्चन एंड करिश्मा कपूर अक्टूबर 2002 में एक दूसरे से सगाई कर लेते हैं. वेडिंग प्लान्स जो थे वो ऐसे थे कि जनवरी 2003 में इनकी शादी हो जाएगी. पब्लिकली सारी चीजें चल रही थी. फिर सुनने में आया कि अचानक से इस एंगेजमेंट सेरेमनी को वॉइड कह दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया. तो अब सुनने में आ रहा है कि इनकी एंगेजमेंट को पता है क्यों खत्म किया गया था? क्योंकि करिश्मा कपूर की जो मॉम है बबीता कपूर, उन्होंने एक क्लॉज रख दिया था कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से ज्यादा फेमस है, तो तुम्हें इतने करोड़ रुपए हमें देने चाहिए ताकि हमारी बेटी तुम्हारे लड़के से शादी करे. और ये पॉइंट बहुत ही अटपटा लगा था बच्चन परिवार को. दैट्स वाई ये पूरा जो कार्यक्रम है वो कैंसिल कर दिया गया था. तो अभी भी ये चीजें निकल के तो आई है, मतलब लेट्स सी कितनी सच्चाई है. आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ. डोंट गो एनीवेयर वेरी चैन.
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match.
1: Happy National Day, Singapore!
0: And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live prata station, Singapore-style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप

भी जेलस फील कर लेती हूँ इस मामले में, जब इंडिया घर फोन लगाती हूँ तो ऑलमोस्ट अभी बारिश का सीजन चल रहा है और वहां से जब ये बातें पता चलती है ना, ओए होए, खुद के घर वालों से जेलसी हो जाती है। आरजे अनुपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एनीवेज, बहुत बार सेलिब्रिटीज इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि हमें उनसे जेलसी हो जाती है यार, कि इतने फेमस हम कब होंगे। हाँ, अगर हम तमिल स्टार धनुष की बात करें, जिन्होंने रांझना मूवी से भी आपका दिल बॉलीवुड में जीता हुआ है, राइट? सो रिसेंटली इनका बर्थडे वगैरह निकला तो इनसे पूछा गया कि आप अपने बर्थडे कितने बड़े बड़े, कितने ग्रैंड प्लान करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इन्होंने बोला कि जब तक मैं 4 साल का था ना, मुझे पता ही नहीं था मेरा बर्थडे कब आता है और मुझे नए कपड़े खरीदने हैं या ऐसा है वैसा है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ही हम लोग लगे रहते थे और घर में सब कुछ ऐसा माहौल था कि साल भर में एक त्योहार में ही अगर नए कपड़े आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात लगती थी। अरे बाबा, सो डेफिनेटली एकदम जमीन से उठकर इतने बड़े बनने वाले शख्स में से एक हैं धनुष। मैं आरजे अनुपर्णा मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। टर्न को एनीवेयर मेरी जान।

0: पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
2: See you soon, boys.
3: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

देखो बर्थडे तो आ रहा है और इस बर्थडे में आप खुद को गिफ्ट दे सकते हैं। अरे ऐसा कौन सा बर्थडे है यार, बता दूं? अरे यार सिंगापुर का 61st बर्थडे है, तो आप खुद को गिफ्ट दीजिए ताकि आपको फील हो कि वाओ हम सबका बर्थडे है यार। देखो चलो मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी बर्थडे को सेलिब्रेट करने का तरीका होता है ये, कुछ बढ़िया लजीज खाना खाया जाए, राइट? तो इसी में आपका साथ निभा रहा है, सेलिब्रेशन को दुगुना तिगुना कर रहा है कौन? शाही महारानी। हाँ जी, 31st अगस्त तक आप इंजॉय कर सकते हैं वीक डे बुफे 61 प्लस प्लस डॉलर में, एंड यूजुअली वो जो अपना बुफे होता है ना वो 68 प्लस प्लस डॉलर में आपको मिलता है, लेकिन अभी सिर्फ 61 प्लस प्लस डॉलर में मिल रहा है, वो भी फॉर 2 पीपल, राइट? और बुफे में आपको ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन फ्लेवर मिलेंगे, स्मोकी तंदूरी फेवरेट्स, एरोमेटिक करीज, फ्रेश नान, डिलीशियस डेजर्ट्स, और वो कहते हैं ना एक बढ़िया वहां की सिग्नेचर कटिंग मसाला चाय। ये ऑफर मंडे टू फ्राइडे 12 noon to 2:30 PM तक रखा जाएगा, एंड सिंगल डाइनर के लिए $38 plus plus है, और 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए सिर्फ $25 plus plus है। वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडेज एक्सक्लूडेड है, तो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या ऑफिस गैंग को, सबको लेकर जाओ, सेलिब्रेट करो सिंगापुर का नेशनल डे और प्लान करो इन एडवांस। एंड रिजर्वेशन के लिए कॉल करो 6235-8840 या विजिट करो www.shahimaharani.com। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
7: You know what? ऐसा कई बार होता है कि क्वेश्चन इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि जवाब देने का मन ही हो जाए। आज कुछ ऐसे ही हुआ। आज मैंने इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे पास भर भर के सही जवाब आ चुके हैं। अंजी मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ हर रोज़ की तरह एक फेमस सी मूवी का एक फेमस सा डायलॉग मैंने यहाँ पे प्ले किया था, जो कि आपको बताना था कौन सी मूवी से है। तो डायलॉग था,
8: थैंक यू मिस्टर राज।
9: You're most welcome, Miss Rajeshwari.
8: हाँ, Mr. Raj, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं वो मुझे चुटकी बुलाते हैं।
9: Okay, चुटकी। और जिन लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ वो मुझे राज कहते हैं, सिर्फ राज।
8: Alright, Raj.
9: Alright.
7: Exactly. अगर आपने पहचान लिया है अभी अभी ये डायलॉग तो आप लेट हो गए हैं। लेकिन इससे पहले मेरे पास सही जवाब आ चुके हैं। डेफिनेटली मूवी का नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ प्यार से कहा जाता है, राइट? एनीवेज बताना चाहूंगी, इस मूवी में शाहरुख खान की एक लेदर की जो जैकेट है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। मतलब कैरेक्टर्स के अलावा, लोकेशन के अलावा, शाहरुख खान की एक लेदर की जैकेट जो है ना, वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी। वो एक्चुअली में इस मूवी के जो डायरेक्टर थे ना, उदय चोपड़ा, वो कैलिफोर्निया के हार्ले डेविडसन के स्टोर से $400 में उस जैकेट को खरीद कर लेकर आए थे। कैन यू इमेजिन? हाँ। सो इस मूवी में बहुत ज्यादा मेहनत करी गई थी जो कि थिएटर्स तक निकल कर आई। तो डेफिनेटली ऐसे ही सही जवाब देते रहा करिए और मेरी बातों की मेहनत ऐसे ही सफल करते रहा करिए। मस्ती मॉर्निंग शो आप सुन रहे थे मेरे यानी RJ नुपुर के साथ।
10: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
4: रात अकेले है। जोश में रहो।
5: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti subah 6 baje se.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना। रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
5: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
6: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
7: Josh me raho, Josh me raho.
8: कोकला चिपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला चिपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला चिपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी।

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
2: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
1: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वाइल्ड एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 Live.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: नहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आपने कभी नोटिस किया है कि हम सब अपनी जिंदगी में वी कैरी कॉन्वर्सेशंस जो शायद कभी होती नहीं है, ऐसी कॉन्वर्सेशन जो हमारे पेरेंट्स के साथ हम करना चाहते हैं लेकिन हम पोस्टपोन करते रहते हैं, अ क्वेश्चन दैट वी ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क आवर पार्टनर लेकिन वो सही मौका ही नहीं मिलता, एक ऐसा डर दैट वी जस्ट स्माइल थ्रू, अ ड्रीम दैट वी क्वाइटली बरी, या सिंपली अ थॉट दैट कीप्स गोइंग राउंड एंड राउंड इन आवर माइंड्स। इसीलिए तो ये शो एग्जिस्ट करता है। डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। और ये शो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमारे पास आपकी सभी बातों का जवाब है। बट बिकॉज समटाइम्स पुटिंग योर फीलिंग्स इनटू वर्ड्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग देम। पिछले कुछ हफ्तों से हमको आपकी चिट्ठियां मिल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप्स, एंड रियली दे मेड अस रिफ्लेक्ट एंड समटाइम्स दे लेफ्ट अस स्पीचलेस, क्योंकि हर ईमेल, हर मैसेज के पीछे देयर इज अ रियल पर्सन लिविंग अ रियल लाइफ ट्राइंग टू मेक द बेस्ट डिसीजंस दे कैन, एंड मे बी दैट्स ऑल एनी ऑफ अस आर डूइंग। आज की चिट्ठियां भी कुछ अलग नहीं है। We'll talk about relationships that have changed over time, dreams we still hope to fulfill, the changing dynamics of family, the fear of growing older, and those quiet thoughts. And we often keep hidden behind a smile. If you've ever found yourself thinking, I wish I could ask someone this, then this is your space. Hame likhiye, because your question may become someone else's answer. मैं हूं रेणुका आपके साथ और शुरू करें क्या डियर मस्ती दिल से। वेल, अब क्या कहें, जिंदगी की बात हो रही है और जिंदगी में तो कभी हार कभी जीत, कभी स्माइल्स कभी दुख, सब कुछ चलता है, राइट?
1: जिंदगी की यही रीत है।
0: तो क्यों ना शुरू करें इस गाने के साथ।
1: जीत है।
0: थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, गम है तो उसके बाद है खुशी, है ना? चलिए सुनते हैं गाना, वापस आते हैं और आज की पहली चिट्ठी, जी हाँ बिल्कुल, पढ़ते हैं आप और हम। दिस इज रेणुका विद यू, स्टे ट्यून्ड, डियर मस्ती दिल से।

0: तो आज की पहली चिट्ठी हो जाए. डियर मस्ती, माय सिबलिंग्स एंड आई वर इनसेपरेबल ग्रोइंग अप. वी शेयर्ड एक ही कमरा, एक टेलीविजन, एक प्लेट ऑफ फूड समटाइम्स एंड वन चाइल्डहुड. वी लाफ्ड एट सिली जोक्स, फॉट ओवर द रिमोट एंड प्रोमिस्ड दैट वीड ऑलवेज स्टे क्लोज. आपको भी फेमिलियर लग रहा है ना? मुझे भी. No filters, no judgment, just your letters. Dear Masti, Dil Se. Welcome back, Radio Masti 24/7 पर रेनुका आपके साथ है. आज की पहली चिट्ठी कुछ siblings के बारे में है. और आज हम अलग अलग phases of life में settled हैं. Jobs हैं, marriage है, children, responsibilities and somewhere along the way, distance quietly entered our relationship. अब हमारी conversations are mostly about family functions or practical things. Sometimes months go by without a proper conversation. छोटी छोटी misunderstandings जो बड़ी हो जाती हैं, then they should. Egos have crept in and I miss us. I miss laughing the way we used to. I don't even know how we became strangers while still being family. कोई तरीका है वापस to find our way back. कितना genuine सा है ना ये letter. ऐसा नहीं लगता कि कोई मिस कर रहा है और काफ़ी एफर्ट्स कर चुका है, या समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा एफर्ट करे जिससे कि केओस ना हो और आपस में टेंशन नहीं हो, लेकिन दोस्ती दोबारा से वैसी वाली हो जाए जो पहले थी. और भाई बहनों के बीच में तो डिस्टेंस वैसे भी ख़त्म होते पता ही नहीं लगता है ना. रेडियो मस्ती 24/7 पर छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे हम, लेकिन इस गाने के बाद जल्दी से आके आपसे मिलूंगी.
1: तेरा यार हूं मैं.
0: अरे इस गाने ने ही सॉल्यूशन दे दिया.
1: तेरा यार हूं मैं.
0: जाओ और बोल दो यार. बट हैंग इन देयर, आई एम गोना कम बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक एंड गिव यू एग्जैक्ट

0: जीवन की। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है आपका हमारा फेवरेट शो, इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से। जी, बिकॉज रेडियो पर बैठा कभी कभी एक अनजाना इंसान आपकी बातों को दुनिया वालों से बेहतर समझता है, और ये इंसान जो है ना, इस टाइम चिट्ठी पढ़ चुका है अबाउट सिबलिंग्स, उनके बीच में डिस्टेंस और कोई भी बचपन वाली बात ना रहना। सो दिस सिबलिंग हैज रिटन टू मी एंड सेड, क्या वो टाइम वापस आ सकता है? यू नो व्हाट, दिस लेटर विल टच मेनी हार्ट्स टुडे, बिकॉज सिबलिंग्स हमारे पहले दोस्त होते हैं, राइट? द फर्स्ट फ्रेंड्स, पीपल हु न्यू अस बिफोर द वर्ल्ड डिड। बट हियर समथिंग लाइफ टीचेस अस, चाइल्डहुड कीप्स अस टुगेदर नेचुरली, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं यार। एडल्टहुड रियली डज नॉट कीप अस नेचुरली क्लोज। एज चिल्ड्रन वी शेयर अ होम, एज एडल्ट्स वी शेयर मेमोरीज, एंड समटाइम्स वी अज्यूम कि वो वाली जो मेमोरीज है ना, वो अपने आप ही रिश्तों को अलाइव रखेंगी। अनफॉर्चुनेटली दे डोंट। रिलेशनशिप्स नीड एफर्ट एट एवरी एज, चाहे भाई बहन हो चाहे कोई और। मे बी आपके सिबलिंग्स बदल गए हैं और मे बी आप बदल गए हैं। लाइफ हैज हैपन टू ऑल ऑफ यू, राइट? डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट प्रेशर्स, पर इसका ये मतलब थोड़े ही है कि सिबलिंग्स का प्यार आपस में खत्म हो गया है। कभी कभी इट्स सिंपली हिडन बीनीथ लाइफ्स नॉइज। अगर आपको इंतजार है उस परफेक्ट मोमेंट का, या फॉर समवन एल्स टू मेक द फर्स्ट मूव, तो करो इंतजार, बैठे रहो। लेकिन आप बन सकते हैं द फर्स्ट वन टू कॉल, नॉट बिकॉज यू आर रॉन्ग, बट बिकॉज द रिलेशनशिप मैटर्स मोर देन बीइंग राइट, है ना? एक पुरानी फोटो भेज दो, एक चाइल्डहुड मेमोरी भेज दो, अरे यार चाय के लिए मिल लो, टॉक अबाउट समथिंग अदर देन प्रॉपर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फैमिली पॉलिटिक्स, टॉक अबाउट ईच अदर। और एक दिन पता है क्या होगा, वी वॉन्ट रिमेंबर हु कॉल्ड फर्स्ट, वील रिमेंबर दैट वी स्टेड कनेक्टेड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फ्रेंड्स आते जाते रहेंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने आपका चाइल्डहुड शेयर किया है, दे कैरी अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी दैट नोबडी एल्स एवर विल। इसीलिए टाइम को उनको आपसे चुराने मत दो, ओके?
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: Exactly. जिसका नाता आपका पहले से है, उसको ऐसे कैसे यार जाने दोगे? Come on, pick that phone up and talk about something. All right. I'm sure siblings का प्यार आ ही जाएगा वापस, छोटा सा एफर्ट करके तो देखो।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: ऐसा होता है जब हमें सल्यूशन आसपास के इंसानों में नहीं मिलता तो हम वही सल्यूशन इंटरनेट पे पाने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब का जवाब मिल जाए तो हम बार बार बार बार बार बार यही करते रहते हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपड़ाव के साथ इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलिए और जब रियलिटी फेस करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करना लाइफ में और रिश्तों में कितना इम्पॉर्टेंट है ना। फिलहाल अभी मेरे हाथों में जिनका लेटर है उन्होंने मुझे लिख भेजा है कि डियर मस्ती दिल से, मैं अपनी हर लाइफ की जो दिक्कत है ना वो गूगल कर लेता हूँ और जो जवाब मिलता है उसे ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेता हूँ। बट अब मुझे लग रहा है कि हर चीज इस फॉर्मूले से नहीं चल सकती, सो व्हाट शुड आई डू। और मैं इस एज में हूँ अपनी लाइफ में कि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आई एम अ वेरी बैड डिसीजन मेकर। सो देखिए जिन्होंने मुझे ये लेटर लिखकर भेजा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी आप एक अच्छे या बुरे डिसीजन मेकर है ये तय करने वाले आप खुद कौन होते। सबसे पहली बात, डिसीजन मेकिंग में अगर आपको सच में किसी की मदद चाहिए ना तो सबसे पहले खुद की मदद लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलतियां होंगी, पर टेस्ट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा ना। हद मार के 10 से 15 गलतियों के बाद आप 16वीं तो सही चीज करोगे, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। ये इंटरनेट पर या किसी तीसरे इंसान पर जो डिपेंडेंसी है जो आपने मुझे खुलकर नहीं बताई है, ये चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके लिए आपको अपने सारे डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा और पहले ही मानना पड़ेगा कि आप एक बहुत अच्छे नहीं ठीक ठीक से डिसीजन मेकर हैं।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
7: Good morning!
8: Did you know one of Kishore Das' most popular songs, Paanch Rupaiya Bara Aana,
9: Paanch Rupaiya Bara Aana,
8: was inspired by a debt that he owed to a college canteen in Indore. Radio Masti 24/7 Live celebrates Kishore Kumar's melodious voice and timeless cracks on his birth anniversary.

यू नो व्हाट, एक बहुत खूबसूरत सा कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि हार्ड वर्क कैन बीट अ स्मार्ट वर्क, एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ में हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है. और मुझे तो लगता है कि हार्ड वर्क जो है ना, बड़े से बड़े टैलेंट को भी बीट कर देता है, राइट? एनीवेज, मैं आरजे नुपुर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ बनी हुई है. तो देखो, काम करना हमारे हाथ में, कितनी शिद्दत से, कितनी कंसिस्टेंसी से और कब तक हम काम कर रहे हैं ये भी हमारे हाथ में है, ऑलराइट? सो डेफिनेटली इसी कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करके मेरे हाथों में जो लेटर आ चुका है उसमें क्या लिखा है चलिए बताती हूँ. हेलो डियर मस्ती, कभी कभी जब किसी काम में ज्यादा मेहनत कर लेती हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम मुझसे होता ही नहीं, और लाइफ की जिस सिचुएशन को मैं फॉर ग्रांटेड ले लेती हूँ वो काम अच्छे से हो जाता है. तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेना चाहिए? बताओ यार क्या करूं. आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि सच में अगर फॉर ग्रांटेड ले लें तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. बट द पॉइंट इज कि ये जो तुक्का है ना, ये हर बार नहीं लगेगा. हाँ, कई बार आप बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी उस काम को अचीव नहीं कर पाते, एटलीस्ट आपका टेक अवे तो बहुत खूबसूरत होता है ना कि अच्छा ठीक है, ये काम इस तरह से नहीं करना है, दूसरी तरीके से करना है. पर आप पहले से ही ऐसे करोगे फॉर ग्रांटेड लेकर और ये हमेशा एक्सपेक्ट कर लोगे ये हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है कि और बड़ी गलती हो जाएगी. और उससे भी बड़ी गलती ये होगी कि आप अपनी लाइफ के पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल फेज में जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स कर रहे हो ना, वो एफर्ट्स करने की आदत खत्म हो जाएगी. हाँ जी, एक इंसान अगर घर के कामों में भी मेहनती होता है ना, तो वो अपने दोस्तों को खुश करने के लिए भी मेहनती होता है, अपने ऑफिस में काम करने के लिए भी मेहनती होता है. तो वो आपकी जो हैबिट्स है ना, वो खराब हो जानी है. तो लाइफ को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेने का. बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत मोड़ों के साथ मैं आरजे नुपुर डियर मस्ती दिल से शो पर.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा आपके साथ और यहां पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से। यस, अभी तक आपने रेणुका का साथ दिया, नुपुर का साथ दिया और अब मेरी बारी है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मेरी जो अगली चिट्ठी है यहां पर, वो कुछ ऐसा कहती है। डियर मस्ती, मैं हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहती हूँ, गुड टाइम्स हो या बैड टाइम्स। लोग जब भी मुझे याद करते हैं मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, लेकिन जब मुझे किसी की जरूरत होती है तो लगता है कोई भी नहीं है, बस मैं ही अकेली हूँ। कभी कभी सोचती हूँ हर किसी के लिए इतना करने के बाद भी मैं इतनी अकेली क्यों फील कर रही हूँ। और उससे भी बड़ा सवाल, बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं बिना बुरा बने। माय डियर लिसनर, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दैट यू आर नॉट अलोन। और पता है, आपका लेटर पढ़ते पढ़ते मुझे लगा जैसे मैं अपने ही कुछ साल पुराने वर्जन से मिल रही हूँ। वही अंतरा जो हर किसी के लिए अवेलेबल रहती थी, जो हाँ बहुत जल्दी बोल देती थी और ना उसको बोलना आता ही नहीं था, जिसके पास बाउंड्रीज नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और जो बहुत बार सबके बीच होते हुए भी अंदर से बहुत लोनली फील किया करती थी। तो अगर आप आज ये फील कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग इस वक्त जो है रेडियो के दूसरी तरफ जो भी सुन रहे हैं यही कह रहे होंगे कि ये तो आई थिंक आई कैन ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेट टू इट। पता है, लाइफ एक अजीब तरीके से हमें सिखाती है। वो हमें एकदम से बड़ा लेसन नहीं देती, वो पहले हमें हिंट्स देती रहती है छोटे छोटे। हर बार जब कोई आपकी काइंडनेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, हर बार जब आप हर्ट होते हो, हर बार जब आप रात को ये सोचते हो सोते हुए कि सबके लिए तो मैं हूं और मेरे लिए कौन है, लाइफ शायद उसी वक्त धीरे से कह रही होती है अब कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भी वैसे ही वी कीप ऑन गिविंग, फिर वैसे ही ओवर गिव करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है अच्छा इंसान होने का मतलब हर वक्त अवेलेबल रहना है हर किसी के लिए। लेकिन माय डियर लिसनर, एक लाइन ने मेरी ना जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल दिया एंड आई विल शेयर दैट विद यू। इफ यू कीप पोरिंग वाटर फ्रॉम योर ओन ग्लास इनटू एवरीवन एल्सेस, बिना देखे कि उनका ग्लास ऑलरेडी फुल है या नहीं, तो एक दिन आपका ग्लास खाली हो जाएगा और जो पानी ओवरफ्लो हो रहा था वो किसी के काम भी नहीं आएगा। और शायद यही हमें भी सीखना पड़ता है, कब देना है और कब रुक जाना है। मैं अभी आंसर यही खत्म नहीं करने वाली हूँ, ब्रेक के बाद लौटकर आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या बदला और कैसे धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता है, शायद वही असली काइंडनेस होती है खुद के लिए भी। यह डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक।

0: Every celebration begins around a table. And this August, Singapore's biggest celebration deserves a feast to match. And let's get together on 9th August for a special National Day buffet from only $58 plus, complete with a live Prata station, Singapore style chicken curry, succulent kebabs, royal curries, and irresistible Indian desserts. Celebrate, indulge, and say Happy National Day, Singapore, over a royal feast. Shahi Maharani North Indian Restaurant. Reserve your table today. Log on to www.shahimaharani.com.
1: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
0: Welcome back to Dear Masti Dilse on Radio Masti 24/7 Live. As promised, बिल्कुल म्यूजिकल ब्रेक के उस बार हाजिर हो चुकी हूँ मैं. और जस्ट इन केस आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारी एक डियर लिसनर ने हमें लिखा था कि वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहती हैं, सबके लिए वक्त निकालती हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनती है, लेकिन जब उन्हें किसी की जरूरत होती है तो उन्हें लगता है कि उनके पास कोई नहीं होता. हर क्वेश्चन वॉज बाउंड्रीज कैसे सेट करें, नो कैसे बोलते हैं. So my dear listener, मैं ना आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ. I have been exactly where you are. So कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल ऐसी थी और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब मैंने सिर्फ दो चीजें सीखी. नंबर वन, हैविंग बाउंड्रीज इज हेल्दी. और नंबर टू, लर्निंग टू से नो व्हेन यू एक्चुअली वांट टू से नो. बस सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बिलीव मी, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. देखिए, मैं आज भी वैसी ही एकदम काइंड हूँ. मैं आज भी लोगों की हेल्प करती हूँ और मुझे लगता है आपको भी ये क्वालिटी जो है कभी नहीं बदलनी चाहिए, which is a part of your personality. Please do not do it, okay? दुनिया को और काइंड लोगों की जरूरत है, लेकिन एक छोटा सा ट्वीक जरूर करिए. काइंड रहिए, लेकिन लिमिटलेस मत बनिए. मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ. मेरी एक दोस्त है, थी, है, पता नहीं, बट है, चलिए. जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती, सबसे पहले फोन मुझे आता. मैं उसकी बात सुनती, टाइम इन्वेस्ट करती, उसके लिए भागती इधर उधर, फॉलो अप करती तो ठीक है कि नहीं, खुद मैसेज करके पूछती और कुछ है, मैं और क्या कर सकती हूँ तेरे लिए. कभी कभी तो मुझे लगता था कि बाकी लोग भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे और उसकी हेल्प करनी थी. मुझे लगता था जितना ज्यादा मैं दूंगी, मैं उतनी ज्यादा अच्छी दोस्त बनूंगी उसकी. लेकिन एक दिन जब मैंने किसी बात पे हर्ट फील किया और उससे बात हुई, तो बड़ी ही कैजुअली उसने मुझसे कह दिया कि मैंने थोड़ी ना कहा था तुझसे मेरे लिए इतना सब कुछ कर. सच बताओ, बुरा लगा, बट दैट्स अ फैक्ट. उसने मुझसे कहा थोड़ी ना था. उस दिन मुझे सिर्फ उसकी बात का दुख नहीं हुआ, मुझे अपने आप से भी बहुत सारी शिकायत हुई कि मे बी दिस इज द रीजन आई फेल्ट एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम. मैं खुद को इतना पीछे क्यों छोड़ चुकी थी. फिर वक्त बीता, आज भी वो दोस्त कभी कभी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आती है, बट कट टू दिस न्यू वर्जन ऑफ मी. मैं आज भी उसकी बात सुनती हूँ, लेकिन डिफरेंस ये है, मैं अपनी ओपिनियन देती हूँ और फिर बस रुक जाती हूँ. मैं उसकी प्रॉब्लम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना लेती. कुछ टाइम पहले उसने मुझसे एक काम करने को कहा था, जैसे यूजुअली उसकी आदत थी मुझसे ऐसे काम करवाने की, और ऑनेस्टली मैं वो करने में कंफर्टेबल नहीं थी. पहले वाली अंतरा शायद हाँ बोल देती, मैं भी 10 कदम होके आगे और बढ़ के उसका काम कर देती, लेकिन इस बार मैंने मुस्कुराकर उससे इतना सिर्फ कहा दैट यार पता है क्या, मैं ना थोड़ी सी ये करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, सॉरी, किसी और से पूछ ले. बस कोई गिल्ट नहीं, कोई लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं. हाँ, उसको शॉक जरूर लगा और उसने कहा भी कि अरे मतलब पहले तो तुम ये बात मतलब मान लिया करती थी. मैंने भी उसको स्माइल करके कहा कि हाँ पहले करती थी, बट अब नहीं कर पाऊंगी, हाँ सॉरी यार. बात वही खत्म. सो माय डियर लिसनर, पहली बार नो बोलना अजीब लगेगा, थोड़ा गिल्ट भी होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि बाउंड्रीज लोगों को दूर नहीं करती, बाउंड्रीज सही लोगों को और करीब ले आती है। और एक बात जो मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया, मीट पीपल वेयर दे मीट यू। जितना वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही सिर्फ आप भी कीजिए। हर बार अपना 100% या उससे ज्यादा देकर दूसरे का 20% एक्सेप्ट मत कीजिए। सबसे जरूरी, अगर आपको सबको खुश रखने का शौक है और वो करने निकलेंगे तो सबसे पहले आप खुद खाली हो जाएंगे। या इसीलिए बी अ गिवर टू योरसेल्फ फर्स्ट। अपना ग्लास पहले भरिए, फिर दुनिया को पानी दीजिए। बिलीव मी, आप और भी अच्छे इंसान बनेंगे। बस इस बार खुद को खोकर नहीं, राइट? I hope this helps. यह डियर मस्ती दिल से, only on Radio Masti 24/7 Live.

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: He has made us laugh. He has made us cry. Remembering the man with the natural yodel on his birthday. Kishore Kumar on Radio Masti 24/7 Live.

अच्छा, आप उनसे ही सवाल करने जाएंगे जिन्होंने आपको सवालों का मतलब बताया है? ना ना ना ना, ये कैसे पॉसिबल है? डियर मसीह दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। समटाइम्स यू नो, स्कूल में भी आपने फील किया होगा कि 100 times अगर टीचर सही चीज हमें बताती थी तो एक टाइम वो कभी गलती करती थी तो हम उन्हें सामने से टोक देते थे कि नहीं मैम, आपने कल इस चैप्टर का नहीं इस चैप्टर का होमवर्क दिया था, तो वो हंस के टाल भी देती थी। बिकॉज इंसान कभी भी गलती कर सकता है यार, वो टीचर हो या हो हमारे पेरेंट्स। आज मेरे हाथों में जो लेटर है वो कुछ इसी डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ जी, इस लेटर में लिखा हुआ है, हाय डियर मस्ती, एक बात है मेरी लाइफ में, मुझे अपने पेरेंट्स में बहुत सारी हैबिट्स में गलतियां नजर आ रही हैं, उनके आपस के रिलेशनशिप में, उनके मेरे रिगार्डिंग जो बिहेवियर है उनमें, तो उनको मैं कैसे बोलूं, वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते। अच्छा, एनीवेज, आप अगर इतने अच्छे थॉट को सोच रहे हैं अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग, तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ये उनके कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग है जो आपके मन में ये थॉट्स ला रही है, और मुझे लग रहा है कि इसी अपब्रिंगिंग को, इसी संस्कारों को देखते हुए आपको अपने पेरेंट्स को टोकना चाहिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके घर पे अराइज हो रही है, आप एक बार शांत दिमाग से बताओ ना कहाँ पे किसकी गलती है। नेवर नो, वो आपसे काफी उम्र बड़े हैं, आपसे तजुर्बे पे हैं, तो क्या पता आपसे भी जल्दी अपनी गलतियां पहचान कर वो ठीक कर ले। सो म्यूचुअली आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। और ऐसे ही बनते बनते गाने बहुत सारे आपकी तरफ आ रहे हैं डियर मस्ती दिल से शो पर।

0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: Did you know one of Kishore Das' most popular songs, 5 Rupaiya Bara Ana,
4: 5 Rupaiya Bara Ana,
1: was inspired by a debt that he owed to a college canteen in Indore? Radio Masti 24/7 Live celebrates Kishore Kumar's melodious voice and timeless tracks on his birth anniversary.
5: Josh

यह है जी मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। चलिए हमारी अगली चिट्ठी की तरफ अंतरा बढ़ते हुए। जी मस्ती, मेरे बच्चे के किंडर गार्डन की जो मॉम्स है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। सच कहूं तो उस ग्रुप में होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं। बहुत सारे मीटअप्स होते हैं, आउटिंग्स होती है, प्लान्स बनते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मन ही नहीं करता उन सब का पार्ट बनने का, लेकिन फिर लगता है कि अगर मैं नहीं गई तो कहीं मेरे बच्चे को ही अलग नहीं फील कराया जाए, और इसी वजह से मैं खुद को फोर्स करती रहती हूँ। अब ये सब ना मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग लगने लगा है, क्या करूं? माय डियर लिस्टनर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दैट नहीं, आप एंटी सोशल नहीं हैं और ना ही आप एक बुरी मॉम है, ठीक है? तो अपने आप को ये गिल्ट ट्रिप पे, जो कि हमारी हर माँ का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, वेरी इजीली दे गो ऑन अ गिल्ट ट्रिप। सो आप शायद एक ऐसी इंसान है जिसकी सोशल बैटरी थोड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, विच इज ऑल्सो वेरी ओके, राइट? बिलीव मी, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हम अक्सर सोचते हैं सब लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है दैट बिलोंगिंग एंड फिटिंग इन दोनों अलग चीजें हैं। फिटिंग इन का मतलब होता है खुद को बदलकर ग्रुप का हिस्सा बनना, और बिलोंगिंग का मतलब होता है जहां आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्टेड फील करें। और मुझे लगता है इस वक्त आप फिटिंग इन की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं, राइट? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या एक अच्छी माँ होने का मतलब हर कॉफी मीट पर मीटअप करना, हर प्लान में जाना, हर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना? मुझे नहीं लगता हो सकता है और जरूरी है। आपका बच्चा स्कूल में आई एम श्योर खुशी होगा, उसके अपने फ्रेंड्स होंगे, और ये प्रेशर सिर्फ आप खुद पर डाल रही होंगी। नाउ दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सी एंड असेस। एक और बात, हम पेरेंट्स ना कभी कभी अपने बच्चों के फ्यूचर के डर में अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। अगर मैं नहीं गई तो, अगर लोग क्या सोचेंगे तो, अगर मेरा बच्चा मिस कर गया तो। लेकिन हर इनविटेशन को एक्सेप्ट करना, हर सोशल गैदरिंग में जाना, ये पेरेंटिंग का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। मुझे लगता है आपको अपने आप से परमिशन सबसे पहले लेनी चाहिए, परमिशन टू से मैं हर बात पर नहीं आ पाऊंगी, और ये बिल्कुल ठीक है। हो सकता है महीने में एक मीटअप पे कॉफी पे चले जाइए, बाकी पोलाइटली मना कर दीजिए, या सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको पढ़ते रहिए। जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड, अ लॉट ऑफ मॉम्स डू दैट। हर मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, राइट? अनलेस इट्स एक्चुअली किसी ने अलग से आपको टैग करके पूछा हो। सो माय डियर लिसनर, आपका बच्चा आपसे ये नहीं सीखेगा कि हर ग्रुप में फिट कैसे होना है, वो ये सीखेगा कि खुद के कंफर्ट और मेंटल पीस की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। एंड बिलीव मी, ये लेसन उसके बहुत ज्यादा काम आएगा। एक अच्छे पेरेंट का डेफिनेशन पता नहीं, ये तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता होता है कि आपको हर जगह पे प्रेजेंट होना है, वही सिर्फ अच्छी माँ हो सकती है। आई थिंक जो इमोशनली अवेलेबल और इमोशनली अवेलेबल प्रेजेंट होता है अपने बच्चों के लिए, उसके लिए तो सबसे ज्यादा आई थिंक वही अफेक्ट करता है। आई होप दिस रियली रियली हेल्प्स, एंड डू लेट मी नो, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए इफ दिस रियली हेल्प्स यू आउट और नॉट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे थे मस्ती दिल से।

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412 320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way. Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं अंतरा, यहां पर आपके साथ। चलिए भाई, हर बार जो है हम लोग आपसे, यानी कि आप जो सुन रहे हैं एज अ लिसनर, एज एन ऑडियंस, आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल तो कई सारे हैं, बट टेल मी ऑनेस्टली, इसका आंसर तो मैं जरूर सुनना चाहती हूँ आपसे। एक ऐसा लाइफ लेसन जो आपने काफी लेट सीखा, What's a life lesson you learned a little too late? पता है, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा लेसन जरूर होता है जिसके बारे में वो सोचता है कि काश ये मुझे पहले समझ में आ जाता। मेरा आई थिंक उसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात भी की है, किसी की चिट्ठी में पढ़ रही थी एंड आई वॉज लाइक कि इसमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी ही बात कर रहा है। मुझे अगर अपनी लाइफ का एक लेसन बताना हो तो वो जो मैंने लेट सीखा तो वो होगा हैविंग बाउंड्रीज, और जब दिल से नो बोलना हो तब नो बोलना और सीखना। सच कहूं, ये लेसन मुझे बहुत लेट समझ में आया। मैं बहुत सालों तक यही सोचती रही कि अच्छा इंसान बनना है तो हर किसी के लिए करना पड़ता है, हर रिक्वेस्ट को हाँ बोलना पड़ता है, हर एक्सपेक्टेशन को पूरी करनी होती है, अपनी नहीं दूसरों की। और फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भाई, सबको खुश रखते रखते खुद ही को मैं कहीं पर पीछे छोड़ के आई हूँ। काश किसी ने मुझे पहले ही बता दिया होता कि नो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसके साथ गिल्ट फ्री होना भी पॉसिबल है। और आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद यही मेरी लाइफ का वो लेसन था, जो मैं पहले सीख जाती तो शायद कुछ दर्द कम होते। लेकिन फिर सोचती हूँ शायद हर लेसन अपना वक्त के साथ आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी लाइफ का वो क्या लेसन था? क्या आपने बहुत देर बाद में रियलाइज किया कि भाई हेल्थ कम्स फर्स्ट, या ये रियलाइज किया पैसा सब कुछ नहीं होता है, या ट्रस्ट अर्न किया जाता है, या फिर किसी और चीज में आपकी जिंदगी बदलती? जरूर बताइए मुझे। एक इंसान का लाइफ लेसन जो है दूसरे इंसान की लाइफ का शॉर्टकट बन जाता है कभी कभी। सो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9158963 पर, आप हमें बता सकते हैं। एंड व्हाट्स अ लाइफ लेसन यू लर्नड टू लेट? आई विल बी वेटिंग आपके जवाबों का। कौन जाने, आपका एक एक्सपीरियंस जो है किसी की जिंदगी बदल दे। यू नेवर नो, राइट? वेल, सुनते रहिए डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: He has made us laugh. He has made us cry. Remembering the man with the natural yodel on his birthday. Kishore Kumar on Radio Masti 24/7 Live.

0: एंड आई एम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर. दिस इज रेणुका विद यू एंड ऑफ कोर्स आई एम योर दोस्त ऑन द रेडियो जो आपको शायद इस समय बेटर समझेगा देन मेनी पीपल अराउंड यू. डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है.
1: कहा ना, और वो अनजाना इंसान इस समय मैं हूँ जो लेकर आया ये वाली चिट्ठी ऑफ अ वुमन इन हर 50s.
0: Well, all my life I was active. मैंने घर, करियर, बच्चे, एजिंग पेरेंट्स सबको संभाला है, always running around. लेकिन अब I don't recognize my own body anymore. I started gaining weight even though I don't think I'm eating much more than before. मेरी नींद वो नहीं रही. I'm stressed most of the time. Some mornings I wake up feeling tired instead of refreshed. Even simple things feel different. My strength is not the same. I'm not as flexible. Climbing stairs leaves me breathless. जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, I don't see the confident woman I once was, and I wonder, will I ever feel good and fit again? Is this just what aging looks like? Am I destined to slowly collect diseases as I grow older? Sometimes it feels like no matter how hard I try, I'm fighting a battle I'm never going to win. मैं इस फेज को कैसे एक्सेप्ट करूं विदाउट गिविंग अप ऑन माई सेल्फ. अरे यार, आपने तो अभी ट्यून्ड इन सभी औरतों का आई एम श्योर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा. कम ऑन, चीयर अप गर्ल, इट्स जस्ट एज एंड इट्स लाइफ. अरे उसी एज के थोड़े ना रहेंगे जिंदगी भर, एज तो बढ़ेगी और साथ साथ में एक्सपीरियंसेस. और सोचिए ना, देयर इज सो मच टू एब्जॉर्ब इन दिस वर्ल्ड, राइट? जैसे कि ये गाना, अब सोचो ऋतिक रोशन के बारे में, ओए होए क्या लग रहा था. कैसे यू कैन फील लो, इमेजिन. ऋतिक रोशन भी तो आज के दिन में 50s में है. चीयर अप गर्ल. यहाँ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और वापस आके इस बात का जवाब भी देंगे. ऑलराइट, अगर आपको कुछ कहना है इस चिट्ठी के बारे में, देन टेल मी क्विक क्विक क्विक बिफोर द म्यूजिकल ब्रेक गेट्स ओवर. इट्स रेडियो मस्ती 24/7 9151 8963. फटाफट जवाब भेजो आप इनको कुछ कहना चाहते हो तो, नहीं तो मेरा जवाब तो तैयार हो ही जाएगा इन गानों के उस पार. गुड इवनिंग.

ऑलराइट, वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, चल रहा है डियर मस्ती दिल से. और इस गानों के ब्रेक से पहले जो चिट्ठी आई थी ऑफ अ लेडी इन हर 50s हु वाज काइंड ऑफ कंसर्न्ड अबाउट लाइफ कैसे बदल रही है, बॉडी कैसे बदल रही है, स्ट्रेंथ वो नहीं रही और अपने आप को शीशे में देख के कॉन्फिडेंस वो नहीं रहा एंड ऑल दैट, राइट. एंड हमने उनको क्या कहा, आइए इधर, आई विल गिव यू अ बिग हग. पहले तो डियर मस्ती दिल से. अरे भाई, जादू की झप्पी हर जगह काम करती है. बट यू नो व्हाट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वुमेन लिसनिंग टुडे क्वाइटली नॉडिंग अलोंग. सबसे पहली बात मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, यू नॉट फेलिंग, योर बॉडी इज चेंजिंग एंड दोज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. भाई 50s में हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, मसल जनरली नेचुरली डिक्रीज होता है, अगर उस पर काम ना किया जाए स्लीप भी थोड़ी सी कम हो जाती है, रिकवरी टेक्स लॉन्गर एंड स्ट्रेस अफेक्ट्स पीपल मोर देन इट डिड 20 इयर्स अगो. पर इस सबका ये मतलब थोड़े है दैट यू हैव लॉस्ट द बैटल. इट सिंपली मींस द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड. मे बी इन योर 30s फिटनेस का मतलब होता था फिटिंग इन टू अ सर्टन ड्रेस, और आज के दिन में इन योर 50s फिटनेस का मतलब हो सकता है टू बी एबल टू ट्रैवल कंफर्टेबली, राइट, एंड प्ले विद योर ग्रैंड चिल्ड्रन वन डे, कैरी योर ओन शॉपिंग, वॉक विदाउट पेन, वेक अप विद एनर्जी एंड फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन. अब 30 वाली बॉडी को चेस करना बंद कर दो. बिल्ड द हेल्दीएस्ट बॉडी यू कैन हैव एट द एज दैट यू आर. हर छोटी छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट करो. एक एक्स्ट्रा वॉक करके देखो. एक अच्छी अगर रात को नींद आ जाए ना तो सुबह सेलिब्रेट करो. वन हेल्दी मील, 1 किलोग्राम अगर कम हो जाए तो नाचो. एंड वन डे विद लेस स्ट्रेस हो तो ओहो हो, मजा ही आ जाए. क्योंकि हेल्थ इज नॉट बिल्ट इन वन ड्रामेटिक मोमेंट, इट्स बिल्ट इन हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी चॉइसेस. एंड प्लीज डोंट बी अनकाइंड टू द वुमन इन द मिरर. शी हैज कैरीड अ फैमिली, बिल्ट अ करियर, लव डीपली, सैक्रिफाइस्ड एंडलेसली. ऑफकोर्स वो बदल गई है. वेयर दोज इयर्स विद प्राइड एंड ऑल्सो ऑनर देम बाय टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. क्योंकि कभी भी ना स्ट्रांग होने के लिए लेट नहीं होता. हेल्दियर हो सकते हो, खुश हो सकते हो. एंड द गोल इज नॉट टू लुक यंगर, द गोल इज टू फील अलाइव. एंड दैट जर्नी कैन बिगिन आज ही के दिन में. भाई है ना इस गाने के साथ, ख्वाबों के परिंदों को उड़ाओ अच्छे से. जो भी हो सो, और क्या, जो भी हो सब कुछ कर चुके हो आप लाइफ में, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्माइल अ लिटिल बिट मोर, एंड यस, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7. ऑलराइट.

जिस तरह मूवीज में बहुत सारे स्टंट्स दिखाते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में थर्ड व्हील का जिक्र करने लगते हैं ना, उन बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड अभी मेरे हाथों में जो लेटर आया है वो यही कहना चाह रहा है बिना कुछ कहे भी। आंटी, इसमें लिखा है, हेलो डियर मस्ती, मैं अपने बारे में ज्यादा ना बताते हुए बताना चाहूंगी, वन ऑफ माय फीमेल बेस्ट फ्रेंड जो है ना, वो मेरे लाइफ पार्टनर को इम्प्रेस करने की हमेशा कोशिश करती रहती है, और ये चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर ली है, तो क्या मुझे अपनी दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए? अब इस पर मैं तो यही कहूंगी कि देखो, ताली दो हाथ से बजती है और आप एक तरफा डिसीजन लेने का सोच रही हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आपकी फ्रेंड जो है वो गलत है, लेकिन आपकी फ्रेंड आपसे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस या दूर के रिलेशन में है। सबसे पहले आपको अपने पार्टनर पर विश्वास होना चाहिए, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनका एक्शन का क्या रिएक्शन निकल कर आ रहा है। अगर उनके एक्शन का रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है कि कुछ है ही नहीं, वो इन चीजों को कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, वो एकदम लॉयल है, उनका तो इन गलतियों में या इस एफर्ट्स में 0.001% भी योगदान नहीं है, तो आपको अपनी दोस्ती तोड़नी नहीं, बट हाँ थोड़े डिफरेंसेस ले आने चाहिए। बट हाँ, उनके एक्शन से इनका कुछ रिएक्शन निकल कर आ रहा है, तब आपको दो तरफा चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, राइट? आई होप आपको मेरी डायरेक्शन से समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या हिंट देना चाह रही हूँ। ऑल ऑफ सडन आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, साइमल्टेनियसली। गाने और बातें लगातार डियर मसीह दिल से शो पर।

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स। A singer who gave us some immortal songs.
1: Nile nile ambar par chand jab aaye.
0: Radio Basti wishes the musical genius Kishore Kumar a very happy birthday.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: मस्ती दिल से सुन रहे हैं आप रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। चलिए अगली चिट्ठी की तरफ हमारे बढ़ते हैं यहाँ पर, जिसपे लिखा हुआ है, बाय द वे मैं हूँ अंतरा आपके साथ। डियर मस्ती, मेरी फैमिली में एक ऐसा रिलेटिव है जिनका डिसीशन, हर डिसीशन में कुछ ना कुछ बोलना उनको जरूर होता है। मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरी मॉम कोई भी छोटा या बड़ा डिसीशन लेने से पहले उन्हें कॉल करती है और फिर वो वही करती है जो वो कहते हैं। इस बात को लेकर मेरी मेरे पेरेंट्स से बहुत आर्गुमेंट होने लगे हैं और सिचुएशन सिर्फ और खराब होती हुई जा रही है। मैं क्या करूं? सो माय डियर लिस्नर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको उस रिलेटिव के फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा अपनी हेल्पलेसनेस से आई थिंक इरिटेशन हो रही है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे अपने पेरेंट्स अपनी लाइफ के डिसीजंस किसी और के इन्फ्लुएंस में लेकर चल रहे हैं तो नेचुरली दिल करता है उनको बोलो कि भाई ये समझ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन फिर जितना समझाने की कोशिश करते हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बढ़ने लगते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि हम उनका डिसीजन बदलना चाहते हैं और वो महसूस ये करते हैं कि हम उन्हें जज कर रहे हैं। सो डियर लिसनर, एक और पर्सपेक्टिव आपको जस्ट एक लाइट में दिखाना चाहती हूँ। हर जनरेशन का डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, कुछ लोगों को किसी ट्रस्टेड इंसान से कंसल्ट करके सुकून मिलता है। हो सकता है आपकी मॉम के लिए वो रिलेटिव सिर्फ एक रिलेटिव ना हो, उनके लिए वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हो या कोई ऐसा इंसान जिसके एडवाइस पर उन्होंने सालों से ट्रस्ट किया हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर एडवाइस ही सही होगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपकी मॉम ये सब शायद वीकनेस की वजह से नहीं, अपनी आदत और ट्रस्ट की वजह से कर रही है। पीपल डोंट चेंज बिकॉज वी आर्ग्यू बेटर, दे चेंज व्हेन दे फील अंडरस्टूड। तो हर डिसीजन पर फाइट करने के बजाय कभी जस्ट एक दिन दो कप चाय के साथ उनके साथ बैठिए और उनसे ये मत कहिए कि अरे भाई आप तो हमेशा ही उनकी सुनती हो, मेरी कहां सुननी है आपको। उसकी जगह मे बी यू कैन आस्क कि मम्मी जब आप उनसे बात करते हो डू यू रियली फाइंड दैट पीस, अदर एडवाइजर्स यू थिंक आर रियली रियली गुड। बिलीव मी, कभी कभी एक सवाल ना 10 आर्ग्यूमेंट्स से ज्यादा पावरफुल होता है। और फिर धीरे से अपनी बात रखिए कि मुझे मम्मी बस इतना लगता है कि आप अपनी जजमेंट पर भी उतना ही ट्रस्ट कर सकती हैं जितना उनकी एडवाइस पर करती हैं। देखिए, हम अपने पेरेंट्स की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे वो हमारी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके साथ अपनी बात कैसे रखते हैं उससे रिलेशनशिप जरूर बदल सकता है। और वैसे भी हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस तब तक ही रहता है जब तक हम अपनी आवाज इस्तेमाल करना नहीं सीखते। इसीलिए आप अपनी बात कहना भी मत छोड़िए, बट उसको प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, बिना हर कॉन्वर्सेशन को बैटल बनाए बिल्कुल उनको बता दे, है ना। Hope this helps. Really, really hope this helps. Radio Masti 24/7 live, but stay tuned. आप सुन रहे हैं Dear Masti, दिल से.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
7: Good morning!
8: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
9: Oh, last link. जी हाँ, इसी के साथ आज के डियर मस्ती दिल से का सफर बस यही तक। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा के साथ आप सुन रहे थे डियर मस्ती दिल से। पता आज जब मैं सारे लेटर्स यू सुन रही थी और खुद के भी लेटर्स देख रही थी जो मेरे पास आए थे, एक चीज मुझे बार बार फील हुई, वो ये थी कि हम सब अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, राइट? अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग लोग मिलते हैं, लेकिन इमोशंस सरप्राइजिंगली बहुत सिमिलर टाइप के होते हैं। किसी को ट्रस्ट टूटने का दर्द है तो किसी को मदरहुड का ओवरवेल्म है, कोई बाउंड्रीज बनाना सीख रहा है तो कोई बस इतना चाहता है कि कोई उसकी बात बिना जज करके सिर्फ सुन ले। और शायद इसी बात ने मुझे एक चीज सिखाई है, दैट लाइफ तब आसान नहीं होती जब प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, लाइफ तब थोड़ी हल्की लगती है जब प्रॉब्लम्स बांटने के लिए कोई मिल जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मेरी प्रॉब्लम तो छोटी है या लोग क्या सोचेंगे या छोड़ो यार किसको बताने से क्या ही हो जाएगा। कभी कभी सोल्यूशन बाद में मिलता है, लेकिन दिल पे जो एक हैवीनेस सी फील होती है वो सिर्फ बोल देने से ही हल्का हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके दिल में भी ऐसी कोई बात है जो शायद आप अपने घर वालों से नहीं कर पा रहे हो, फ्रेंड से नहीं कह पा रहे हो या सिर्फ किसी न्यूट्रल इंसान से शेयर करना चाहते हो, तो याद रखिए गूगल नहीं, चैट जीपीटी भी नहीं, डियर मस्ती दिल से। ह्यूमन टच का, ह्यूमन बातों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई भी एआई मुकाबला नहीं कर सकता है। सो हम हमेशा आपके लिए यहाँ पर है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9151893 पर। आपकी आइडेंटिटी हमेशा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगी और बिल्कुल हम हर लेटर को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, उन्हें काफी महसूस करते हैं। आज जाने से पहले भी ये बात कहकर जाना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू लीव लाइक दैट, दैट खुद के साथ भी उतनी ही काइंडनेस रखिए जितनी आप दूसरों को देते हैं। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए काफी पेशेंट। कभी कभी इक्वेशन उल्टा करके देखिए, शायद जिंदगी थोड़ी और नरम, थोड़ी और सॉफ्ट लगने लगे। मैं आरजे अंतरा एंड ऑन बिहाफ ऑफ रेणुका एंड नुपुर, डियर मस्ती दिल से फिलहाल साइनिंग ऑफ।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर सारे जय। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में एक बार फिर से समर दोनों बाहें फैलाकर कर रहा है आपका इस्तकबाल, तहे दिल से स्वागत। आज का शो बेहद खास है, बेहद खास इसलिए कि लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आज हम जिनकी बात करेंगे वो बेहद खास शख्सियत हैं। अब आप कहेंगे यार वो तो बेहद खास ही होते हैं जिनकी आप बात करते हैं इस शो में। नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कहेंगे अगर ऐसा कहेंगे तो, लेकिन ये जो आज के लेजेंड है ना, ये औरों से भी दो कदम आगे, इसलिए ये कुछ खास बन जाते हैं। अब आप भले मेरी बात को अभी ना मानिएगा, पर आज का शो पूरा सुन लेने के बाद गारंटीड आप इस शख्स को सलाम करेंगे। बाय द वे अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके बारे में आप में से भी जिस किसी ने भी सुना है या इन्हें देखा है या कभी मिलने का मौका मिला है तो वो इनकी काबिलियत को सलाम किए बिना नहीं रह सकता। और हमारे जो आज के नौजवान हैं, लिसनर्स हैं, वो भी जरूर आज के इस खास एपिसोड को सुनकर कह उठेंगे वाह इंसान हो तो ऐसा हो। इससे पहले कि हमारे आज के लेजेंड का मैं आपसे तारुफ करवाऊं, मैं उनका एक बहुत ही फेमस कोट है वो पढ़कर आपको सुना रहा हूं, आप पहचान जाएंगे, गैस कीजिए। चलिए, उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, है ना कितना परफेक्ट कोट। अब आप में से कई तो पहचान गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जो सही गैस कर चुके हैं उनका आंसर है इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ, आज हम उन्हीं की बात करेंगे, अब्दुल कलाम साहब की लाइफ, उनके स्ट्रगलिंग डेज, उनके जीवन के सफर में आए उतार चढ़ावों का सामना उन्होंने कैसे किया और भी उनके बारे में बहुत कुछ, सब कुछ बताने का मौका मुझे मिला है। एक बार फिर से उन्हें याद करके इंस्पायर होने का मौका आप सबको मैं दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद खास लेजेंड्स का ये सफर, लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आप हैं समर के साथ रेडियो 24/7 लाइव पर। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद कहानी को शुरू से शुरू करेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओहो, अरे कोई सास तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
1: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: ऐसा क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
1: अरे तू भी चुप हो जा।
0: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
2: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
2: हाँ,

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
4: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: हाँ जी, वेलकम बैक सिंगापुर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ, और शो चल रहा है लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज का ये एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं लेजेंडरी शख्सियत लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। जी हाँ, वही कलाम साहब जिन्हें तब भी और आज भी सलाम करती है पूरी दुनिया। वो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट तो रह ही चुके हैं, इसके अलावा उन्होंने एरोस्पेस साइंटिस्ट और इंजीनियर रहते हुए भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। कलाम साहब अपनी लाइफ और करियर में कई बड़ी बड़ी पोस्ट्स पर रहे, पर सबसे खास बात थी एक उनकी जिसका हर कोई कायल था, और वो थी उनकी सिंप्लिसिटी, सादगी। जी हाँ, प्रेसिडेंट रहते हुए जो उनकी सिंप्लिसिटी थी ना, उसकी तब भी चर्चा हुई थी, और आज भी जब कभी उनका नाम आता है तो उनकी इंस्पायरिंग बातों के साथ ही उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में बात जरूर होती है। यही वजह रही है कि उन्हें नाम दिया गया कलाम द कॉमन मैन। जन्म से लेकर लास्ट ब्रेथ तक वो एक कॉमन मैन की ही तरह रहे, कोई दिखावा, कोई रसूखात नहीं। ढेरों किस्से हैं उनकी सिंप्लिसिटी के, जिसे मैं आगे भी आपको बताता रहूंगा। इन किस्सों को जानकर आप वास्तव में सोचेंगे कि क्या वाकई में इतने बड़े ओहदे में होते हुए भी कोई ऐसा हो सकता है। वेल, एक और नाम उन्हें दिया गया था और वो था मिसाइल मैन। जी हाँ, प्रेसिडेंट बनने से पहले वो एक काबिल साइंटिस्ट रहे, जिन्होंने अपनी सर्विसेज इंडिया को दी, दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को दी, जिनमें एक थी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और दूसरा द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। इन दोनों जगहों पर उन्होंने काम किया और वो यहाँ इम्पोर्टेंट पोजिशंस पर रहे। इनके अलावा भी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल की डेवलपमेंट में भी वो शामिल रहे, और यही वो वजह रही जिसके बाद उन्हें नाम दिया गया APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन। वेल, बहुत रोचक रहा है इस कॉमन मैन का मिसाइल मैन तक का सफर। बताऊंगा उनकी लाइफ से जुड़ी इंस्पायरिंग बातें, उससे पहले अभी वक्त एक म्यूजिकल ब्रेक का है, लौट कर आऊंगा तब उनकी कामयाबी और दिलचस्प किस्सों से पहले जानेंगे थोड़ा सा कलाम साहब के बचपन के बारे में। समर लगातार आपके साथ बना रहेगा रेडियो 24/7 लाइव पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, मैं समर एक बार फिर से कर रहा हूँ आपका तहे दिल से इस्तकबाल। कलाम साहब की कहानी आप सुन रहे हैं मेरी जुबानी, और मैंने आपको बता दिया था कि कलाम साहब कॉमन मैन से मिसाइल मैन तक की पहचान रखते थे, और इसके पीछे जो वजह थी वो भी मैंने आपको बताया। उनका पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम। तो ये APJ क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। इनके नाम में ए जो था वो था अबुल, पी का मतलब था पाकिर, और जी था जैनुल आबदीन। साथ में उनका नाम लें तो बन जाता है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। है ना कमाल का नाम, कमाल कलाम सलाम। वाकई में कमाल करे कलाम साहब, जिन्हें आज भी याद करके उन्हें हर कोई सलाम करता है। बहरहाल कलाम साहब का जो बर्थ है वो एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। तब उनकी जो फैमिली थी वो इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में रामेश्वरम है, वहाँ एक गांव है धनुषकोडी, वहाँ रहा करती थी। इनके फादर जैनुल आबदीन साहब वो न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही कोई बहुत पैसे वाले थे। वो मछुआरों को नाव किराए पर देने का काम करते थे, और उनकी फैमिली में 4-5 मेंबर्स नहीं थे बल्कि लंबी चौड़ी फैमिली थी, जहाँ कंबाइंड फैमिली में वो रहा करते थे। फैमिली मेंबर्स की जो संख्या है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कलाम साहब खुद तो रहे 5 भाई, जबकि इतनी ही यानी कि 5 ही उनकी बहनें भी थी। ऐसे ही टोटल 3 फैमिली साथ रहा करती थी। अब आप सोचे कितना भरा पूरा परिवार रहा होगा। वेल, उनके पापा जो थे जैनुल आबदीन साहब, उनका कलाम साहब की लाइफ में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे पर वो जो भी काम करते थे पूरी लगन और शिद्दत के साथ करते थे, और पिताजी के यही सारे गुण आ गए थे कलाम साहब में। साथ में जो संस्कार पिताजी ने दिए सो अलग, यही सब आगे जाकर कलाम साहब के लिए बहुत काम आए। जब वो स्कूल गए ना तो वहां उनके टीचर्स ने भी जो ज्ञान की बातें कही वो भी उनके दिलो दिमाग में बैठती चली गई, जिसका उन्हें बहुत फायदा मिला। जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तब एक बार उन्हें टीचर ये बताने के लिए कि बर्ड्स कैसे उड़ान भरते हैं, सभी बच्चों को वो एक समुद्र किनारे ले गए, सी शोर पर। इन्हीं बर्ड्स के उड़ान भरने की जानकारी छोटे कलाम के मन में घर बना गई, और उन्होंने ये तय कर लिया कि उन्हें एरोसाइंस जैसे सब्जेक्ट में ही करियर बनाना है। तो ये पक्षी, हवा, विमान, ये सब उनके पसंदीदा टॉपिक बन गए। बहुत दिलचस्पी लेते थे वो ऐसी बातों में। आगे बात कैसे बढ़ी ये बताऊंगा आपको, लेकिन एक छोटे से इंतजार के बाद। जी हाँ, अभी एक म्यूजिकल ब्रेक, ध्यान रखिएगा। अभी तो आपको कलाम साहब की पिक्चर का ट्रेलर ही दिखाया है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में कलाम साहब की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी, सुनते रहिए।
2: हम थे वो थी, वो थी हम थे।

ठक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमारा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा, आ हा हा, हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ। लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में आज बात हो रही है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। स्कूलिंग के दौरान ही कह सकते हैं कि जो पूत के पैर थे वो पालने में देखना शुरू हो गए थे। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही छोटी सी उम्र में ये संकेत मिलने लग गए थे कि ये बालक कुछ ना कुछ औरों से तो अलग करने वाला है। आंखें हमेशा आसमान की तरफ लगी रहती, कभी बर्ड्स को तो कभी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स को निहारते रहते। वैसे वो शुरू से ही पायलट बनना चाहते थे। एक बार वो इसके बेहद करीब तक पहुंच कर रह गए। बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की एक सिलेक्शन लिस्ट में वो 9th पोजीशन पर थे, जबकि उसमें शुरुआती 8 का ही सिलेक्शन होना था। सोचिए एक नंबर से रह जाने का क्या मलाल होता होगा ना। बाकी उन्हें फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छे लगते थे, उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। मैथ्स पढ़ने के लिए वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे ट्यूशन जाया करते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियली उनकी फैमिली स्ट्रांग नहीं थी, तो कलाम साहब एक वक्त में फादर और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर तक बांटा करते थे। जी हाँ, स्कूल की पढ़ाई भी और साथ ही साथ न्यूज़पेपर बांटकर जो पैसा मिलता था उससे भी गुजारा चलाते थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बचपन में जो उन्हें परिस्थितियां मिली उसने उन्हें स्ट्रगल करना सिखा दिया। और जब वो स्कूल से पास आउट हुए तो उन्होंने अपनी पसंद को आगे बढ़ाते हुए स्पेस साइंस सब्जेक्ट में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। यानी जो वो सपना बचपन में देखा करते थे उसे साकार करने की दिशा में वो लगातार आगे बढ़ते रहे। पढ़ाई का सिलसिला यहां रुका नहीं, आगे चलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO में उन्होंने दाखिला ले लिया। कुछ साल तक यहाँ काम किया, फिर उन्होंने रुक किया इंडिया की स्पेस एजेंसी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में। वेल, कई सालों तक कलाम साहब ने यहाँ एज अ स्पेस साइंटिस्ट काम किया। सैटेलाइट लॉन्चिंग से जुड़े अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट से वो जुड़े रहे और आखिर वो पहला मौका आया जब उनका जो सपना था वो हकीकत में सच होता दिख रहा था। जी हाँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर कलाम साहब की ही देखरेख में इंडिया के पहले स्वदेशी यानी कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे शॉर्ट में SLV भी कहते हैं, उसे न सिर्फ बनाया गया बल्कि उससे सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया। 1982 में यह कारनामा हुआ था। सैटेलाइट का नाम था रोहिणी। ये वो टाइम था जब इंडिया भी इस फील्ड में, स्पेस की फील्ड में, दुनिया के दूसरे देशों के सामने अपना एक अलग दर्जा रखने लग गया था। कलाम साहब की तरह कई और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट्स की टीम यहाँ अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही थी। इसके बाद यहाँ से वो कैसे आगे बढ़े, उनके सामने क्या चैलेंजेस आए और उनकी लाइफ के दिलचस्प किस्से वो सभी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बेहतरीन गानों का ये म्यूजिकल ब्रेक है, सुनिए, फटाफट लौट कर आइए। समय करेगा इंतजार। यह रेडियो मसी 24/7 लाइव का परिवार।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
4: खुशामदीद, सुस्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आज एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी समर की जुबानी। तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे एक छोटा सा स्कूल का बच्चा ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगा था, जो परिंदे, आसमान, हवाई जहाज, रॉकेट और मिसाइल के नजदीक तक जाने का इरादा रखता था। उसके ये ख्वाब तब हकीकत में तब्दील होते चले गए जब वो डीआरडीओ और इसरो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लग गए। पर अगर आप सोच रहे हैं कि इस शख्स का सपना यहीं तक था, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के लेजेंड के ख्वाब लिमिटलेस थे साहब। जी हाँ, ऐसे सपने जिनकी कोई सीमाएं नहीं होती। और जब वो प्रेसिडेंट भी बने तब भी यही बात हमेशा वो बच्चों और यंग जनरेशन से भी कहा करते थे कि सपने हमेशा देखो और सपने का जो दायरा है उसे ऊंचे से ऊंचा रखो। वैसे बात तो सही भी है, ऊंचे सपने देखने में कोई हर्ज थोड़ी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि सपने देखने में टैक्स तो लगता नहीं है, ऐसे में बियॉन्ड द बाउंड्रीज लिमिटलेस सपने देखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पर हाँ, इस बात के साथ ही कलाम साहब ये भी नसीहत देते थे जो मैंने आपको शुरुआत में कोट के तौर पर बताया था कि सपने देखो, पर असल सपना वो नहीं है जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। बहरहाल, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया और रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च भी कर दिया, और उसके बाद हिंदुस्तान के साथ ही उनकी भी खूब वाहवाही होने लगी। इंडिया इस टाइम तक इंटरनेशनल स्पेस क्लब का एक तरह से मेंबर बन गया था। इस बड़े मिशन की सक्सेस के बाद कलाम साहब लग गए मेड इन इंडिया के ही गाइडेड मिसाइल्स डिजाइन करने में। इस शानदार साइंटिस्ट ने अग्नि और पृथ्वी जैसे दो सबसे पावरफुल मिसाइल को इंडियन टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए बनाया, और उनकी यही काबिलियत थी जिसकी वजह से 1992 से 1999 तक हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के एडवाइजर बन गए। साथ ही साथ उन्हें सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट महकमे का सेक्रेटरी भी बना दिया गया। अब साहब, कलाम साहब के कंधों पर पहले से और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। अब जाहिर बात है आगे का मिशन भी बड़ा होना था। समझ गया मैं किस मिशन की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट, जो कलाम साहब का नेक्स्ट चैलेंजिंग मिशन था, और इसमें भी वो पहले की ही तरह खरे भी उतरे। कलाम साहब की देखरेख में इंडिया ने 1998 में राजस्थान के पोखरण फील्ड में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट करने में कामयाबी हासिल की। ये जो दिन था हिस्टोरिकल था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया न्यूक्लियर पावर वाले जो नेशंस थे उनके क्लब में भी शामिल हो गया था। बताइए, ऐसी शख्सियत को हेड्स ऑफ तो बनता ही है। वाकई में कमाल के थे कलाम साहब। कॉमन मैन से लेकर मिसाइल मैन तक के उनके सफर के बारे में बात भले ही हम चंद सेकंड्स में कर लेते हैं, पर इसके पीछे जो उस शख्स की मेहनत, लगन और कुछ कर गुजरने का संकल्प और सपना होता है ना, उसकी सक्सेस का स्वाद तो वही जानता है। सही कह रहा हूं मैं? खैर चलिए, अभी यहां एक और खूबसूरत सा गानों का ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात करेंगे जब, तो आपको बताएंगे कि ये साइंटिस्ट कैसे बन गया इंडिया का प्रेसिडेंट, कलाम साहब के साथ ये कमाल कैसे हुआ, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: मैंने

0: सपने।
1: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच गई है। यह है लेजेंड्स के अचीवर सीरीज, जहां मैं मदर टेरेसा की कहानी आपको सुना रहा हूं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सारी तैयारी हो चुकी थी। माँ ने मदर टेरेसा को कहा कि अगर तुमको वाकई लगता है तो जाओ, मगर इसके बाद लौटना मत, एक ही लक्ष्य रखना। बस माँ की इस हिदायत को साथ लिए मदर टेरेसा निकल पड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी से जुड़े हुए ग्रुप लोरेटो सिस्टर्स का मेंबर बनने, और वहां से इंडिया की यात्रा पर निकल गई। इससे पहले उनका इंटरव्यू हुआ। लोरेटो सिस्टर्स की मदर सुपीरियर ने ये इंटरव्यू लिया, ये तय करने के लिए कि एग्नेस अपने फैसले को लेकर कितनी दृढ़ निश्चयी हैं, डिटरमाइंड हैं या नहीं है। क्योंकि इससे पहले 19th सेंचुरी में जब इन लोगों को बाहर के देशों में भेजा जाता था तो बहुत सारी नंस शादी कर लेती थी, बहुत सी घर लौट आई थी, और एक बार शपथ लेने का मतलब था लौट कर कभी वापस नहीं आना। इंडिया के बंगाल आए इन कैथोलिक चर्च के मेंबर्स ने कई चर्च बनाए और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बनाए, और वहीं इनको टीचर बनाने के लिए भेजना तय हुआ मदर टेरेसा को। मगर मदर टेरेसा ने मना कर दिया, क्योंकि उनको टीचर नहीं बनना था, वो सेवा करना चाहती थी गरीबों की। उन्होंने कहा कि वो क्रिश्चियन धर्म की एजुकेशन नहीं देंगे इंडिया की गर्ल्स को। लेकिन तब भी उनको भेजा गया। 7 सिस्टर्स में से एक वो भी थी जो इंडिया में लोरेटो मिशनरी काम के लिए भेजी गई थी। जनवरी 6 साल था 1929 को 19 साल की एग्नेस जहाज से स्वेज कैनाल, रेड सी और इंडियन ओशन होते हुए बे ऑफ बंगाल के जरिए कोलकाता आ गई। वहां से उनको दार्जिलिंग भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले उन्हें पेरिस जाना था ये यात्रा शुरू करने के लिए। तो पेरिस जब वो जा रही थी तो उनकी माँ और बहन भी उनको छोड़ने आई थी। कहीं ना कहीं एग्नेस को मालूम था कि अब वो उनसे कभी नहीं मिलेंगी। क्या गुजरी होगी आप सोच सकते हैं, छोटी सी उम्र में ये डिसाइड कर लेना कि ये गॉड्स कॉल है, कितनी मजबूत इच्छा शक्ति होगी। हालांकि वो थोड़ा कंफ्यूज थी, मन भी भटका हुआ था। उनके सारे दोस्त, उनकी सारी सहेलियां बहुत रोईं। ये भी सच है कि एग्नेस अपनी माँ से फिर कभी नहीं मिली इसके बाद। लेकिन उन्होंने जीवन का एक और बड़ा फैसला जब लिया तो माँ को ही याद किया, उनको खत लिखा। माँ ने जब हाँ कहा तभी वो उस राह पर निकली। उस राह पर मैं भी आपको ले चलूंगा, मगर एक ब्रेक के बाद। अभी तो ये म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है, इसे सुनिए। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मदर टेरेसा की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में, जो आप सुनते हैं रेडियो मस्ट 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी।
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
3: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपसे मुखातिब हूं, और आज मदर टेरेसा की कहानी आप सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। लोरेटो कॉन्वेंट में मदर टेरेसा पढ़ा तो रही थी, ज्योग्राफी पढ़ा रही थी वहां पर, मगर उनको कुछ और करना था। हालांकि यहीं आकर उन्होंने अपना नाम भी बदला, नाम क्या रखा जाए ये भी एक सवाल था। उन्होंने लेट 19th सेंचुरी की एक फ्रेंच नन ट्रीज मार्टिन के नाम पर अपना नाम रखने का सोचा, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी, उस वक्त उनकी उम्र 15 साल की थी, तब उस उम्र में ही गॉड्स कॉल सुनकर सब कुछ छोड़कर आ गई थी। मगर बहुत ही कम उम्र में ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो जाने की वजह से वो चल बसी, उस वक्त उनकी उम्र 24 साल की थी। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि ऑलरेडी इस नाम की नन मौजूद थी, एग्नेस को यही नाम पसंद था, सो शी हैज चोजन इट्स स्पेनिश स्पेलिंग टेरेसा, TERESA। ये नाम फाइनल हो गया साहब, ये भी एक स्पेनिश सेंट से इंस्पायर्ड था। लेकिन लोरेटो कॉन्वेंट में उनको बंगाली टेरेसा के नाम से सिस्टर्स बुलाने लगी, क्योंकि उनको बंगाली आ गई थी। दार्जिलिंग से उन्हें कोलकाता के सेंट मैरीज स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ ये लोरेटो सिस्टर्स एक लोकल सेंट एनी की डॉटर्स थी, यानी लोकल बंगाली विमेन थी। ये लोग साड़ी पहनती थी, गर्मियों में सफेद और सर्दियों में नीली। सिस्टर टेरेसा बच्चों का खूब ख्याल रखती, खुद आंगन को धोती, साफ करती, तो उनको लोग माँ बुलाने लगे। लोरेटो सिस्टर्स को एक शपथ लेनी होती थी कि वो गरीबों में रहेंगी, मतलब उनको लाइफ के सुखों से, लग्जरी से कोई लेना देना नहीं होगा। सिस्टर टेरेसा ऐसा ही करती थी, जो चादर कोई नहीं लेता था वो ले लेती, किसी के ऑलरेडी पहने हुए शूज पहनती, मतलब नया नहीं खरीदती थी, यूज किए हुए शूज पहनती थी, कोई भी दिखावा नहीं करती थी, बस एक मुस्कान हमेशा रखती थी, जोक्स पर दोहरा होकर हंसती थी। अच्छा, कॉन्वेंट की वॉल्स के पीछे की ओर एक कच्ची बस्ती थी, एक झील थी जिसे मोती झील कहा करते थे। इसी के किनारे एक स्लम था, यहां लोरेटो कॉन्वेंट की स्टूडेंट्स जाकर इन लोगों की सैटरडे को मदद किया करती थी, लेकिन सिस्टर टेरेसा नहीं जा पाती थी ड्यू टू रूल्स ऑफ लोरेटो मिशनरी। वेल, धीरे धीरे वो सिस्टर टेरेसा से मदर टेरेसा पुकारी जाने लगी, और उस वक्त उनकी उम्र महज 27 साल थी, 27 ईयर्स। वक्त गुजरता गया और पूरे वर्ल्ड में चेंजेस होने लगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, उधर इंडिया में, खासकर बंगाल में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। बंगाल में भुखमरी और अकाल का असर होने लगा, और ऐसे में मदर टेरेसा को एक और फाइनल कॉल हुई गॉड की। इस राह में उनको एक स्पिरिचुअल एडवाइजर भी मिले जो आगे आने वाले सालों तक उनके साथ रहे। उनके बारे में एक ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको मैं, फिलहाल ये म्यूजिकल ब्रेक है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और यह है मदर टेरेसा की कहानी, जिसे आप सुन रहे हैं समर की सुबह रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आज बात हो रही है मदर टेरेसा की। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो मदर टेरेसा ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी, जो उस वक्त तिराना में रहा करती थी उनके भाई बहनों के पास। उन्होंने अपनी माँ को बताया वो राज जो उन्हें भगवान ने उनके कानों में कहा था। वो गरीबों अनाथ बच्चों की सेवा करना चाहती हैं। गॉड्स कॉल वॉज टू सर्व पुअरेस्ट ऑफ पुअर, मगर लोरेटो में रहते हुए ये संभव नहीं था। माँ का जवाब आया, उन्होंने वही लिखा कि वो उस राह पर जा सकती हैं मगर डिवोशन और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ। वेल, इसमें उनका साथ दिया फादर वैन एक्सम ने, जो नए नए आए थे कलकत्ता में। उन्होंने अपनी मन की बात उन्हें बता दी और फादर ने उनका पूरा साथ दिया। काफी मुश्किलात हुई क्योंकि छोड़ना बहुत मुश्किल था। रोम में पोप तक बात पहुंची, आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। मदर टेरेसा कैथोलिक नन बनी रहेंगी, यानी लोरेटो मिशनरी की नन, मगर वो जो सबसे अभावग्रस्त हैं उनकी सेवा करेंगी। उन्होंने लगभग एक साल तक पटना के हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली, तब कहीं जाकर नर्स का काम सीख पाई और फाइनली वो तैयार थी मैदान में काम करने को। साल था 1949। साथ में उनके एक बंगाली लड़की चली आई थी, नाम था शुभासिनी दास। 3 साल बाद 1952 में मदर टेरेसा और मिशनरी ऑफ चैरिटीज अपने नए घर में आ गए, जिसे मदर हाउस कहा गया। इसके बाद तो सब इतिहास है साहब। मदर टेरेसा ने अपने आप को पूरी तरह से गरीबों को समर्पित कर दिया। अच्छा, इवन यहां मदर हाउस में भी जो भी सिस्टर काम करती थी उनका जीवन भी बहुत कठिन हुआ करता था। 3 साड़ियां, 1 छाता, 1 चादर, 1 जोड़ी चप्पल, यही इनकी प्रॉपर्टी होती थी। जब इनकी ड्रेस डिसाइड हो रही थी तो इसकी भी परमिशन ली गई, इसकी भी स्वीकृति ली गई। 3 ऑप्शन में से सफेद साड़ी वाला चुना गया, जिस पर नीली बॉर्डर थी जो मिशनरी का प्रतीक थी, और लेफ्ट हैंड की तरफ एक क्राइस्ट का साइन होता था। ब्लाउज पूरा स्लीव्स का होता था, सफेद रंग का, और फिर ये मदर्स हाउस का सिंबल बन गया। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं मदर टेरेसा की कहानी समर की जुबानी।

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
2: वेलकम बैक. मदर टेरेसा की कहानी आप सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में समर के साथ. यह सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती. चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं. इंडिया के बहुत ही फेमस फोटोग्राफर हुए रघु राय. उन्होंने मदर टेरेसा पर बहुत काम किया, कई किताबें लिखी, उनकी बहुत सारी तस्वीरें क्लिक की, उनको डॉक्यूमेंट किया बहुत पहले ही जब मदर को वर्ल्ड रिकॉग्निशन नहीं मिली थी तभी. और वो रघु राय जी के दिलो दिमाग पर इस तरह से छा गई थी, उन्हें इंस्पायर कर दिया था कि रघु राय जी के घर में जगह जगह मदर की तस्वीरें दिखाई देती थी. उनकी तस्वीरों का एक बहुत ही पसंदीदा कैरेक्टर थी मदर. रघु राय जी के घर में उन दिनों बाथरूम डार्क रूम हुआ करता था, वहां जगह जगह मदर की तस्वीरें थी. रघु राय जी की बेटी पूछती, पापा ये कौन है? तो वो कहते, मदर. तब उनकी बेटी सोचती कि शायद ये हमारी ग्रैंड मदर होंगी. बाद में बड़े होने पर उनको मालूम हुआ कि वो जाने कितनों की मदर और ग्रैंड मदर हैं. रघु राय साहब एक दफा उनको क्लिक करने के लिए गए तो मदर ने कहा, देखो तुम कल मत आना. रघु राय जी ने पूछा, क्यों? तो इस पर मदर ने जवाब दिया, कल ईस्टर डे है और मैं नहीं चाहती कि कोई इधर उधर घूमे और हमारी पिक्चर्स ले जब हम प्रेयर्स में हो. रघु राय जी को बड़ा खराब लगा ये सुनकर, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मदर को प्रार्थना करते हुए कैद कर पाए अपने कैमरे में, दिखा पाए दुनिया को, कैप्चर कर पाए उस मोमेंट को. तब उन्होंने कहा, आप दो बड़ी प्रेशियस बात कहती हैं, एक तो ये कि आप पुअरेस्ट ऑफ पुअर की देखभाल करती हैं, इसके बाद दूसरी चीज आप ये करती हैं कि आप गॉड से कनेक्ट हो जाती हैं और खुद को रिजुविनेट करती हैं. सो मदर, आई हैव डन हाफ ऑफ माई स्टोरी, अदर हाफ इज मिसिंग. मैंने कभी जीसस को नहीं देखा. आप कहती हैं जब आप प्रेयर करती हैं तो वो आपकी आंखों में होते हैं. मदर, यू कांट डिनाई मी. हाँ, मदर भी निरुत्तर हो गई. इस पर मदर ने एक शर्त जरूर रख दी उनके आगे कि तुम कल सुबह 6 बजे आ जाना और ठीक मेरे बाजू में बैठ जाना, बिल्कुल चुपचाप, और चुपचाप फोटो लेते रहना, वहां से हिलना भी मत. प्रॉमिस करने को बोला. रघु राय जी ने कहा, अच्छे बच्चे की तरह पक्का प्रॉमिस. और दूसरे दिन सुबह सुबह वहां पहुंच गए मदर हाउस में. आगे क्या हुआ ये जानने के लिए एक ब्रेक की जरूरत रहेगी. अब जब सस्पेंस आ जाता है तो उस पर एक ब्रेक लगाना तो बनता ही है. ब्रेक के उस पार होगी थोड़ी और ममता और माँ. मदर टेरेसा की कहानी आप सुन रहे समर की जुबानी. सुनते रहिए.

0: You are tuned into Radio Mighty 24/7 Live, keeping you entertained on the go.
1: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने. ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
2: हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ले आया हूं आपको आज मदर हाउस में. ईस्टर डे है आज. मदर प्रार्थना में जाने को हैं तैयार अपनी सारी फैमिली मेंबर्स के साथ. इतने में रघु राय, मशहूर फोटोग्राफर, मशहूर फोटो जर्नलिस्ट भी वहां पहुंच जाते हैं. मदर उनको बड़े मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहती हैं और चैपल में ले जाती हैं और अपने से 3-4 फीट दूरी पर बिठा देती हैं, चुपचाप बैठे रहने की ताकीद के साथ. लेकिन वो तो फोटोग्राफर ठहरे साहब, उनको तो एक ही जगह से पिक्चर लेने को कहा जाए तो कैसे पॉसिबल है. वो तो अलग अलग एंगल ढूंढेंगे. वहां से फोटो ठीक नहीं आ रहा था तो लिहाजा रघु राय उठे और सामने की ओर से उनकी 3-4 तस्वीरें ले ली. प्रेयर के बाद मदर को उन्होंने कहा कि मदर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया. मदर ने मुस्कुराकर उन्हें माफ कर दिया और कहा ऐसा कभी मत करना. ओह, कितनी भी बातें करें मदर टेरेसा की कम है. मैं उनके इतने बड़े जीवन से बस वहीं तक की ठीक से पूरी कहानी सुना पाया जब जीवन के सबसे कठिन निर्णय उन्होंने लिए, जब वो अड़िग रही हटी नहीं और ऐसे ही जीते जीते साल 1997 में उनकी देह हमें छोड़कर चली गई. लेकिन कितनी ममता वो हमें दे गई. यह 1979 में उनको नोबेल प्राइज मिला, उन्हें मैग्सेसे प्राइज भी मिला और उनकी डेथ के बाद 2016 में उन्हें सेंट की उपाधि दी गई. जाने कितने पुरस्कार उनको दिए गए, लेकिन उनके त्याग और प्रेम के आगे ये सब फीका और कम है और हमारी ओर से उन्हें नमन है. उन्हीं के शब्दों के साथ मैं आज के शो की समाप्ति की इजाजत चाहूंगा. तो ये सुनिए और याद रखिएगा, आपको भी रखना है अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल. किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाना है, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाना है और कुछ ऐसा कर जाना है कि लोग आपको याद करें. याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में. मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर. तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर.
3: That is a gift of God, vocation in the vocation. I already belong to Christ. And then his call came that to give all and to be one of the poor amongst the poor.
4: Mother, you are one of the very special people to whom God has given a call. Did it happen just in a flash, on an instant, or did you know it was coming?
3: It's just a call in the call.
4: A call within a call.
3: Within a call.
4: And that was to go out of Loreto and serve the poorest of the poor.
3: To bring God's love and compassion amongst the people who were unwanted, unloved, uncared, who have no one.

0: हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: रात अकेली है तो क्या हम तो आप

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

your voice. I am singing song. Soup song. Flop.

0: कर दो,
1: कल्याण कर दो,
2: काम कोई एक तो महान कर दो,
1: महान कर दो,
0: हर दहेज का भी बच जाएगा, लगे हाथों कन्या का दान कर दो,
1: कन्या दान कर दो।

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: हाँ, शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो,
2: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
1: जो भी देख यही पूछ है ये किसकी जगाती है कयामत कोई।

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं कहती यमला पगला दीवाना।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

एक बार सूरदास जी हरे कृष्ण धुन गाते गाते एक कुएं में गिर गए। कृष्ण को पुकार लगाई, कृष्ण आ गए और ले चले सूरदास को कुएं से निकाल कर बाहर। सूरदास तो समझ गए थे कि ये और कोई नहीं मेरे कन्हैया हैं, पकड़ लिया हाथ। कृष्ण बोले, अब तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हें छुड़ाने आया था बस। सूरदास जी बोले, नहीं, तुम और कोई नहीं मेरे कन्हैया हो। कन्हैया बोले, नहीं सूर, मैं तो बस साधारण ग्रामीण हूं, यहां से गुजर रहा था, तुम्हें गिरे हुए देखा तो निकाल दिया। सूरदास ने कहा, नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम ही मेरे कन्हैया हो। और कृष्ण ने हाथ छुड़ाया और भाग गए। सूरदास

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: अच्छा, वो कौन सा एक ऐसा ट्रीट है या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आप बिक सकते हो? मतलब आप समझो मेरी बात, आपकी लाइफ की वीकनेस क्या है? अगर मैं अपनी बात करूं, फॉर एन एग्जाम्पल, सुबह सुबह मुझसे किसी ने बोला कि नूपुर यार, ये वाली एक्सेल शीट तुम बना दोगी मेरे लिए? मैंने कहा बदले में क्या मिलेगा? कहते हैं दो बड़ी बड़ी डार्क चॉकलेट्स। मैंने कहा बस मैं तुम्हारी हो गई, मैं ये काम कर दूंगी। और बताओ, और भी ऐसे कुछ छोटे मोटे काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर लूंगी यार। सो मेरी भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी वीकनेस है। सो आपकी वो वीकनेस क्या है जिसके लिए आप एकदम फ्लैट होकर दूसरों के काम भी कर सकते हो? बताना जरा। 9151896 मेरा नंबर। मैं आरजे नंबर मस्ती मॉर्निंग शो पर ऑन दिस नोट बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने और बहुत सारी बातें करने के लिए आ चुकी है। एंड बाय द टाइम वो जो दो चॉकलेट मुझे मिल गई है ना काम करने पर, वो जरा खाकर निपटा के स्टूडियो के बाहर से वापस आती हूँ। जरा आती हूँ मैं।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: रहो। चलते फिरते आप कैसी कैसी शॉपिंग करते हैं? आप बर्गर ले लेते हैं, हॉट डॉग ले लेते हैं, आइसक्रीम ले लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं, माचा ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और अपने आप को पैम्पर करते रहते हैं। लेकिन आजकल बड़े बड़े क्रिकेटर्स और एक्टर्स ये नहीं कर रहे हैं, वो चलते फिरते रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सीखो कुछ उनसे। अच्छा हाँ, इनसे सीखने के लिए बैंक बैलेंस भी तो इतना तगड़ा होना चाहिए, राइट? एनीवेज, रीसेंट अपडेट की अगर बात माने तो फॉर्मर इंडियन कैप्टन यानी अपने फेवरेट विराट कोहली जी को और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा ने एक लग्जरी अपार्टमेंट 18.29 करोड़ का मुंबई में इन्वेस्ट करके रख दिया है, क्योंकि ये लोग वहां रहने तो जाते नहीं। ना ना ना ना, अभी थोड़े दिन पहले भी इन्होंने एक अपार्टमेंट लिया था और अब एक और अपार्टमेंट ले लिया है। और वो दिन भी दूर नहीं कि मैं आपको बताऊं कि अच्छा, इन्होंने अपार्टमेंट बेच भी दिया है। ये है इनका तरीका मस्ती मॉर्निंग शो पर। कुछ और भी तरीके, कुछ और भी गाने, जस्ट फॉर यू मेरी जान। डोंट गो एनीवेयर, मस्ती मॉर्निंग शो।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: अच्छा, जब चीजें ना बहुत प्यार से, बहुत प्योरिटी से बनाई जाती है ना, तो उसका टेस्ट भी अलग निकल कर आता है, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बन चुका है ये जीजी मार्ट। हाँ जी, जीजी मार्ट योर नेक्स्ट ग्रोसर पार्टनर आप कह सकते हैं, योर डोर ग्रोसर पार्टनर भी आप कह सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपके घर तक डिलीवरी भरपूर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मिल जाती है, जहां पे क्वालिटी भी मिलती है, प्योरिटी भी मिलती है। एंड यू नो व्हाट, इनके सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं तीन, एंड फर्स्ट वन इज गुलकंद, जिसमें 100% प्योर एंड नेचुरल आपको रोज पेटल जैम मिलता है, यानी हर एक बाइट में आपको मजा आ जाने वाला है। हाँ, दूसरा आपको जामुन फ्लेवर्ड हनी मिलता है, एंड एक ऐसा हनी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एक हेल्दी चॉइस आप कह सकते हैं। नंबर थ्री, जामुन जूस जो है ना, वो इनका 100% नेचुरल है, नो एडेड शुगर, एंड डेफिनेटली आप इसे अलग अलग तरह से अपनी वेलनेस के लिए ब्लेंड कर सकते हैं। सो इतने सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स चाहिए तो ggmartonline.com विजिट कीजिए या 432 बलस्टियर रोड विजिट कीजिए। डिटेल के लिए, एड्रेस के लिए कॉल भी कर सकते हैं आप 8085-6577 पर। मैं आरजे अनुपम, मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर
4: जीजी
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com
4: GGMart, your personal grocer.
5: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन
6: All is well.
5: आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस
0: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
1: चेक

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: एक ऐसी मूवी जिसके लिए अनिल कपूर ने 7 महीनों तक मेहनत करी थी। कैन यू गेस? डेफिनेटली, बिकॉज मैं आरजे नुपुर आपको पूरी की पूरी हिंट देने वाली है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आरजे नुपुर आपके साथ है एंड हर रोज की तरह एक फेमस सी मूवी का एक फेमस सा डायलॉग यहाँ प्ले करूंगी और आपको उस डायलॉग से पहचानना है मूवी का नाम। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आज का डायलॉग है,
3: तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
2: राइट, अगर आप पहचान गए हैं इस डायलॉग को तो क्विकली बता दो मेरी जान रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे डीएम करके बताओ। मैं इंतजार कर रही हूँ।